0: के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमरीका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और हॉर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani.

0: London. घर आंगन के आज के शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला और
1: मैं हूँ रश्मि कुकरेती।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 386.1 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
1: तो मंजुला, शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत ख्याल से। शिक्षा ने महिलाओं को सिर्फ डिग्री या नौकरी ही नहीं दी है, बल्कि सबसे बड़ा उपहार दिया है, वो क्या है?
0: आजादी।
1: नजरिया। वो नजरिया जो पूछना सिखाता है, क्या ये सही है, क्या मैं यही चाहती हूँ, और मैं तो कहूंगी ये ही है असली आजादी, है ना?
0: जी हाँ। तो आजादी दीजिए थोड़ी देर के लिए अपनी सभी परेशानियों, जिम्मेदारियों को, और अब याद कीजिए बस अपने खुशियों से भरे सपनों को, अपने बचपन को। तो आज का सवाल है, बारिश के मौसम में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बारिश में भींगना, कुछ गुनगुनाना, या फिर कुछ और? अपने जवाब हमें लिख कर भेजिए इस ईमेल आईडी पर fmgoldg@gmail.com।
1: तो बने रहिए हमारे साथ, जहां हर पल मिलेगा मनोरंजन, नई जानकारी और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली ढेर सारी बातें।
0: बिल्कुल।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया से। और दोस्तों, जब भी मौसम विभाग बारिश, तूफान या गर्मी की सटीक जानकारी देता है तो हम अक्सर सिर्फ मौसम का हाल सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में मौसम विज्ञान को इतना भरोसेमंद बनाने के पीछे किन लोगों का योगदान रहा? तो आज बात करते हैं भारत की वेदर वुमन अन्ना मणि की।
1: वाह, तो मुझे लगता है तुम जो बताने जा रहे हो अन्ना मणि के बारे में, वो बहुत हम सुनेंगे। और जैसा कि तुम क्या बता रही थी, हम आ रहे थे स्टूडियो में, कि वो बचपन से ही किताबों की दीवानी थी, है ना। और आठवें जन्मदिन पर पता है उन्होंने क्या चीज मांगी?
0: क्या?
1: एनसाइक्लोपीडिया।
0: क्या बात है। हाँ। तो यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें भारत की महान वैज्ञानिकों में शामिल कर गई
1: और उनको नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के साथ उन्होंने शोध किया और बाद में मौसम विज्ञान विभाग में जुड़कर मौसम मापने वाले उपकरणों के विकास में क्रांतिकारी योगदान उन्होंने दिया।
0: और उस दौर में भारत मौसम संबंधी उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर था, लेकिन अन्ना मणि ने स्वदेशी उपकरण विकसित कर इस निर्भरता को काफी हद तक समाप्त किया।
1: और सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण शोध किए। उनके काम ने न केवल मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाया, बल्कि भारत में सौर और पवन ऊर्जा के विकास की भी मजबूत नींव रखी।
0: बिल्कुल। और लेकिन अन्ना मणि की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी उपलब्धियां नहीं थी दोस्तों। उन्होंने एक बार कहा था कि हम अवसरों का इंतजार नहीं करते, हम उन्हें अपने काम से बनाते हैं। और ऐसे समय में जब विज्ञान की दुनिया में महिलाओं की मौजूदगी बहुत कम थी, अन्ना मणि ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से साबित कर दिया कि सपनों की कोई लैंगिक सीमा नहीं होती।
1: बिल्कुल। तो मंजिला, अगली बार जब आप मौसम की सटीक जानकारी के लिए अपने मोबाइल या रेडियो तक पहुंचे, तो उस सफर में अन्ना मणि जैसे वैज्ञानिकों के योगदान को जरूर याद करिएगा।
0: बिल्कुल याद करूंगी।

0: और अभी हम सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत जिसको गाया था सुरक्षा पंडित ने और अनवर ने फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से।
1: और मंजुला, अभी जब तुमने ये वेदर वुमन नमणि जी की बात की और साथ में गीत लगाया, बड़ा सुंदर गीत चुना तुमने सुलक्षणा जी का गाया हुआ। सच में इतनी खूबसूरत अभिनेत्री और देखिए कितनी विलक्षण प्रतिभा, वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी, कितनी सुंदर मीठी उनकी आवाज, एक शास्त्रीय संगीत से जुड़े घर से आती है। जतिन ललित उनके भाई प्रमुख संगीतकार रहे हैं और पंडित जसराज उनके चाचा जी हैं। और ये मधुर गीत बता रहा था कि ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जब महिलाओं में होती हैं तो वो अलग से ही चमकती है ना।
0: बिल्कुल सही। और देखिए जब हमने बात की कि मेल के बारे में कि क्या विषय है, तो इसके बारे में हमारे पास जवाब भी आने लगे। हनी रे ये लिखती हैं कि आई लाइक टू सिट नियर विंडो, यानी खिड़की के पास बैठना पसंद करती है, वहां पे एक कप चाय या फिर नॉवेल पढ़ना पसंद करती हैं। और मैं कहूँ कि मेरा भी कुछ ऐसे ही शौक है तो मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे में गाना सुनना।
1: हाँ, और एक और मेल आई हुई है चौधरीबाज जिला हिसार से, राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रियांशी, वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में मैं इधर से उधर पेड़ों के नीचे से गुठली उठाकर कहीं पर जगह दिखे तो लगा देता हूँ। भाई वाह, सबसे बड़ी दौलत यही है कि पेड़ पौधे बुरे से बुरे आदमी को भी छांव देते हैं। और एफएम गोल की तारीफ करना मेरे बस की बात नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सबसे पहले मैंने ही ईमेल भेजनी शुरू की थी। भाई वाह, क्या बात है, इनकी जो कोशिश है वो काबिले तारीफ है। मंजुला, हम पर्यावरण के प्रति सतर्क रहें और बारिश तो क्योंकि समय वन महोत्सव भी चल रहा है ना, और ये समय है कि आप नए नए पौधे लगाएं, नए नए एफर्ट्स भी करें, है ना।
0: बिल्कुल। और अंशु माला जी ने लिखा है कि बारिश की बूंदे जब मेरी हरी भरी बालकनी पे पड़ती है तब गिली मिट्टी की एक नॉस्टैल्जिक महक हवा में घुल जाती है। उस टाइम दिल बस एक ही मेमोरी में बार बार लौट आता है।
1: क्या बात है, मुझे भी बारिश की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मंजुला बहुत पसंद है।
0: और अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि बेटियों को भी कुछ चीजें सिखानी चाहिए, जैसे कि नो का मतलब नो होता है और बाउंड्रीज उन्हें जरूर बताएं। उन्हें सिर्फ पढ़ाना ही काफी नहीं है, उन्हें जिंदगी जीने की सही समझ और अपने

0: भी खड़े होने का साहस भी सिखाना बहुत जरूरी है। बचपन से ही उन्हें बताइए कि ना एक पूरा वाक्य होता है। अगर किसी बात पे इंसान या किसी परिस्थिति में उन्हें सहज महसूस नहीं हो रहा है तो उनका ना ही काफी है। उन्हें किसी को सफाई देने या वजह बताने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी, उन्हें मुखर बनाइए, उन्हें अपनी बाउंड्री सीमाएं तय करना सिखाइए। हर किसी को अपनी निजी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता। अपनी भावनाएं, अपनी बातें और अपनी परेशानियां भाई हर किसी के साथ साझा करना भी समझदारी नहीं होती मंजुला।
0: बिल्कुल, और आज सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बेटियों को ये भी समझाइए कि वहाँ जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं होता। अपनी निजी तस्वीरें, लोकेशन, रोजमर्रा की गतिविधियाँ या हर छोटी बड़ी बात सार्वजनिक करने से बचें। इंटरनेट पर एक बार गई जानकारी हमेशा के लिए रह सकती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मंजुला। मैं तो ये कहूंगी कि कभी किसी पार्टी या समारोह पर या किसी जगह पर हो तो उन्हें एक पल के लिए भी ये लगे कि माहौल ठीक नहीं है या लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं या वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, तो भाई उनको बिना किसी झिझक के वहां से निकल जाना चाहिए। यही सही फैसला है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बुरा मान जाए, या उनको देखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा किसमें है ना।
0: और उन्हें ये भी सिखाइए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। भरोसेमंद लोगों के फोन नंबर याद रहें, आपातकालीन सेवाओं की जानकारी रखें और अपने मन की आवाज पर भरोसा करना सीखें।
1: भाई आत्मरक्षा सिर्फ हाथों की ताकत थोड़ी होती है, सही समय पर सही फैसला लीजिए। अगर ये समझ है तो मैं तो कहूंगी ये सबसे बड़ी सुरक्षा है ना मंजुला।
0: बिल्कुल, तो आइए अपनी बेटियों को सिर्फ अच्छे अंक और अच्छी नौकरी ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्ट सीमाएं और सुरक्षित जीवन जीने के कौशल भी दें, क्योंकि सशक्त बेटी ही सुरक्षित बेटी होती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म आंगन की कली से। और बारिश की फुहारे, मिट्टी की खुशबू और चाय की चुस्कियां, मानसून का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन बताइए, क्या इस मौसम में आपके बाल भी ज्यादा टूटते हैं या स्किन अचानक ऑयली और डल हो जाती है? अगर जवाब हाँ है तो आज की छोटी सी बात, छोटे मोटे जो टिप्स हैं, आपके बहुत काम आने वाली है।
1: और शुरुआत मैं करने वाली हूँ टिप्स का। भाई, सबसे पहले बालों की देखभाल की बात करते हैं। कोशिश कीजिए कि बारिश के पानी से बालों को बचा कर रखें, है ना। अगर बाल भीग जाएं तो घर पहुंचकर उन्हें साफ पानी से धो दें और अच्छी तरह सुखाने के बाद ही बांधें।
0: बिल्कुल। और एक आसान सा DIY हेयर सीरम भी आजमाइए।
1: हाँ, मुझे बताओ, ये मैं सुनना चाहती हूँ बहुत अच्छे से।
0: एक स्प्रे बॉटल में पानी भरें और उसमें 2-3 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और 2-3 बूंद टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिलाइए। हर हेयर वॉश के बाद इसे बालों की लंबाई पर हल्का सा स्प्रे करें। इससे बाल फ्रेश, मैनेजेबल और स्कैल्प भी तरोताजा महसूस होगी।
1: और जब मंजुला तुमने बालों की बात की तो चेहरे को हम कैसे छोड़ सकते हैं ना।
0: चलिए, अब मैं सुनती हूँ ध्यान से क्या बताने वाली है।
1: भाई, हर रात चेहरा साफ करने के लिए कॉटन की मदद से राइस वाटर लगाइए अपने चेहरे पर। हाँ, और इसे रात भर रहने दो। ये आपकी जो त्वचा है उसको बिल्कुल प्राकृतिक ग्लो देगा और उसे हाइड्रेट रखने में भी मदद करेगा।
0: बिल्कुल। और हाँ, खूबसूरती से बाहर से ही नहीं आती, भरपूर पानी पीजिए, प्रोटीन और मौसमी फलों को अपनी प्लेट में जरूर जगह दीजिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसका नूर चेहरे और बालों पर अपने आप दिखाई देता है।
1: वाह, क्या बात है, जुल्फों पर बात हो रही है। मुझे लगता है तुम्हारा गाना भी जरूर जुल्फों से जुड़ा हुआ होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो एक छोटी सी कविता मैं सुना दूं?
0: बिल्कुल, इंतजार कर रही हूं, कब सुनाने जा रही हैं।
1: बारिश का मौसम है तो मुस्कुराना भी जरूरी है, खुद का ख्याल रखना और हर बहाना भी जरूरी है।
0: बाल हो या चेहरा, प्यार थोड़ा खुद से कीजिए, क्योंकि हर मौसम में आपका खिलखिलाना भी जरूरी है, चाहे चेहरा हो या बाल।

0: अभी हम सुन रहे थे येसुदास और लता मंगेशकर को फिल्म त्रिशूल से, और मुझे लग रहा है कि रश्मि जी मेल चेक कर रही हैं।
1: जी बिल्कुल, मेल्स की तो बारिश हो गई है यहाँ जबरदस्त। हाँ, और तो उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं कि भाई मैडम जी हमें तो बारिश में चाय पकौड़े खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। देखो चाय पकौड़े किसको नहीं अच्छे लगते ना बारिश में।
0: और गौरी शंकर जी लिखते हैं, आप दोनों बेटियों को राम राम, और आज का जो सवाल है बहुत ही बढ़िया पूछा, मौसम के हिसाब से अब तो खैर उम्र चली गई, लेकिन बचपन में बारिश का इंतजार करते थे, घंटों घंटों नहाते थे, तबीयत खराब हो जाए या हमारे खाने के लिए चीली बना देती थी, खुश रहते थे, अच्छा लगता था।
1: और कामायनी लक्ष्मी नगर से कह रही है कि मुझे तो बस बारिश की बूंदों को गिरते देखना बहुत पसंद है, जब हरे हरे पौधों और पत्तियों पर फूलों पर गिरती है ना तो बहुत अच्छा लगता है।
0: और सुदर्शन मुखी जी लिखते हैं कि बचपन और बारिश दोनों का चोली दामन का साथ है, बचपन में कागज की कश्ती चलाना, गलियों में दौड़ लगाना, हमारे बच्चों के जो मीठी यादें हैं बचपन की वो अभी भी याद आती है।
1: और अनिल जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं मुझे बारिश में भीगना और रोस्टेड कॉर्न खाना पसंद है। भाई मुझे भी बहुत पसंद है अनिल जी।
0: बिल्कुल, तो एक बार फिर से सवाल भी बता दें और ईमेल आईडी भी। हमारा आज का सवाल है कि मानसून में बारिश में आपको क्या सबसे अच्छी बात लगती है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। किटी पार्टी नाम तो सुना होगा
1: भाई, यहाँ बारिश और वहाँ किटी पार्टी, भाई क्या कॉम्बिनेशन है।
0: तो नाम सुनते ही हंसी ठिठोली गपशप और ढेर सारी मस्ती याद आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार वही म्यूजिकल चेयर, वही ड्रेस कोड, वही पुराने गेम्स, तो कहीं ना कहीं इस खूबसूरत मिलन को थोड़ा सा दोहराव वाला तो नहीं बना देते
1: भाई। म्यूजिकल चेयर और वही ड्रेस कोड, पुराने गेम, कहना क्या चाहती हो मंजुला?
0: तो मैं इस बार चाहती हूँ क्यों ना अपनी किटी पार्टी में एक फ्रेश बदलाव लेकर आया जाए। सबसे पहले ड्रेस कोड का दबाव छोड़िए, हर व्यक्ति अपने पसंदीदा कपड़ों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और सहज महसूस करता है। जब सभी कंफर्टेबल होंगे तब उनकी मुस्कान भी सच्ची होगी और बातचीत भी दिल से निकलेगी। फैशन से ज्यादा जरूरी है आपका अपनापन।
1: और अब मैं कुछ गेम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि गेस द पर्सनैलिटी जैसा एक गेम हो, या इमोजी क्विज हो, या पिक्चर पजल हो, या फिर मेमोरी चैलेंज हो, पर मुश्किल से गेम्स हैं लेकिन आप कर सकते हैं ट्राई। और उसके बाद टीम बनाकर छोटे छोटे दिमाग लगाने वाले खेल खेले जाएं, क्योंकि खेल सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि जो हमारी सोचने की क्षमता है, टीम वर्क को और बातचीत को भी बढ़ाते हैं। और अगर चाहे तो एक छोटा सा टैलेंट कॉर्नर भी रख सकते हैं ना, कोई कविता सुनाए, कोई गाना सुनाए, कोई ट्रैवल स्टोरी साझा करे, और कोई आसान सी रेसिपी भी बताए, या फिर कोई लाइफ हैक शेयर करे। यकीन मानिए हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है।
0: और एक और खूबसूरत आइडिया है नॉलेज एक्सचेंज। हर सदस्य 5 मिनट में कोई नई जानकारी, किताब, हेल्थ टिप या निवेश की छोटी सी सीख या किसी नए स्किल के बारे में बताए। सोचिए एक किटी पार्टी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का मंच भी बन सकता है।
1: और एक सबसे जरूरी बात मैं मंजुला कहना चाहती हूँ, भाई तुलना नहीं होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए ना, आलोचना भी नहीं होनी चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए जहाँ हर सदस्य खुद को महत्वपूर्ण महसूस करे। क्योंकि यादगार पार्टियां जो होती है ना, वो महंगे डेकोरेशन से नहीं बनती बल्कि अच्छे माहौल से और खूबसूरत यादों से बनती है ना।
0: बिल्कुल, तो अगली बार जब किटी पार्टी हो सिर्फ मेन्यू नहीं, सोच बदलिए, कुछ नया जोड़िए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे से सीखिए और ऐसी यादें बनाइए जो तस्वीरों से नहीं दिलों से जुड़ जाए।
1: हाँ, और आप पंछी बनकर गगन में उड़ने लगे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अनाड़ी से, और एक ईमेल हमारा इंतजार कर रहा है पढ़ने के लिए। महेश अग्रवाल जी लिखते हैं कि रश्मि जी नमस्कार, आप दोनों को बालकनी में बैठकर मौसम का आनंद लेना, चाय की चुस्की और समोसे के साथ आनंद लेना चाहिए। चलिए हम ले लेंगे बाद में, अभी तो पूरे मानसून पड़ा हुआ है।
1: और साथ में एक और बड़ी खूबसूरत सी मेल आई है, रमीशा जैन है आप, वो कह रही है कि अगर मुझसे पूछा जाए वर्षा ऋतु की सबसे प्रिय बात क्या है, तो वो कहती हैं कि मेरा उत्तर होगा कि महाराष्ट्र के घाटों की हरियाली और उस समय ज्योतिर्लिंग यात्रा करने का अनुभव।
2: भाई क्या बात है।
1: वर्षा के दिनों में वो कहती हैं सह्याद्री पर्वतमाला का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है, और चारों ओर फैली हुई हरियाली और पर्वतों को अपनी गोद में समेटे हुए बादल, छोटी छोटी जलधाराएं, शीतल वायु मन को अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानव प्रकृति ने स्वयं को नए रूप में सजा लिया है। जब बादल धीरे धीरे पर्वतों और वनों को घेर लेते हैं तो वह दृश्य शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। वाह, मुझे विशेष रूप से वर्षा ऋतु में महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग को लिंगों की यात्रा करना बहुत पसंद है। भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर जैसे तीर्थ स्थलों की ओर जाते हुए घुमावदार घाटों से होकर गुजरना अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव है। और मार्ग के दोनों ओर फैले हुए वन, पर्वतों से गिरते हुए असंख्य जलप्रपात और धुंध से ढके हुए शिखर, भाई वाह, यात्रा को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का साधन ही नहीं रहने देते बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक आनंद का संगम बना देते हैं। भाई मैं तो ये कहूंगी
0: बहुत खूबसूरत। और पता है रश्मि जी, मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ, और ये मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो सुन रहे होंगे, वो भी महसूस कर रहे होंगे, जब आप ये बातें बता रही थी, ये पढ़ रही थी, तो हम सब अपने दिमाग में उसको कल्पना कर रहे थे।
1: बिल्कुल रमीशा जैन जी।

0: हम ये कहेंगे कि आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं, आपने तो शब्द चित्र बना दिया, आंखों के सामने वो चित्र घूमने लग गए, शब्द तैरने लग गए। ऐसा ही लिखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है घर आंगन, और मेल करते रहिए। मेल बताएंगी मंजुला दोबारा?
1: हाँ, मेल बता देती हूँ। पहले तो विषय जो हमारा प्रश्न है वो बता दूं कि बरसात में आपको क्या करना अच्छा लगता है, बरसात की सबसे अच्छी बात कौन लगती है, और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और अभी जो आपने ये मेल पढ़ा वो ऐसा लग रहा था जैसे रिमझिम के तराने बज रहे हों।

0: अभी हम सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी को फिल्म काला बाजार से।
1: और बारिश की बातें हो रही हैं, हमारे पास मेलों की भी बारिश हो रही है, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। रोनी सेक्टर 8 से संजय कुमार, पुनीत रावत, विजय परवीन कुमार, प्रदीप, अरुण शिवा और ईशा कह रहे हैं कि वर्षा में हरियाली और मिट्टी की सुगंध का बस मजा ही आ जाता है और परिवार के साथ बैठकर बारिश का आनंद लें या घूमना हो तो वो कहते हैं देहरादून जाना उन्हें बहुत पसंद है।
0: क्या बात है। नहीं, देहरादून सच में बारिश में बहुत खूबसूरत
1: जी, देहरादून और मसूरी।
0: और अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गुणों के लिए हम हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं वही खजाना हमारे अपने खेतों, हमारी रसोई और आयुर्वेद में सदियों से मौजूद है। तो चलिए करते हैं दिलचस्प तुलना। अकाई बेरी, जिसका नाम आपने सुना होगा, या आंवला। तो अकाई बेरी को रोगों से लड़ने वाला जो तत्व है उसका भंडार कहा जाता है, लेकिन हमारे आंवले में विटामिन सी कई गुना अधिक होता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, त्वचा, बाल और पाचन सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। और कीमत, जितने में अकाई बेरी का एक छोटा पैकेट आता है उतने में एक किलो ताजा आंवला मिल जाता है।
1: और इसके अलावा जो केल यानी कि केल या सहजन यानी मोरिंगा के पत्ते भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और केल तो दुनिया कहती है सुपर ग्रीन कहलाती है, थोड़ा महंगा होता है पर इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो। लेकिन हमारे जो अपना जो देसी सहजन के जो पत्ते हैं ना भाई, वो कैल्शियम, लोहा, प्रोटीन और पोटेशियम से भरे हुए हैं और पोषण के मामले में ये किसी भी विदेशी सुपर फूड से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी मंजुला कई बातों में वो आगे ही है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और कोरियन जिनसेंग की बात बहुत होती है लेकिन हमारा अश्वगंधा भी कम नहीं है। तनाव कम करने के लिए कोरियन जिनसेंग काफी लोकप्रिय है, वहीं अश्वगंधा सदियों से आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा रहा। आधुनिक शोध भी बताते हैं कि ये तनाव कम करने, अच्छी नींद लाने, ऊर्जा बढ़ाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है।
1: और क्रेनबेरी और कोकम, भाई क्रेनबेरी जो है उसकी जूस की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन जो कोकम है वो भी रोगों से लड़ने वाले तत्वों से भरपूर है और ये शरीर को ठंडक भी देता है और पाचन में मदद भी करता है और गर्मियों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक पेय है। और मैं तो ये कहूंगी मंजुला, कोकम शरबत है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी इसकी रेसिपीज भी, अगर महाराष्ट्र कोंकण रीजन की बात करें तो जब मैं बंबई प्रवास में रही तो बहुत सुंदर सुंदर बस मीठी मीठी डिशेस जो है वो मैंने वहाँ पे मुझे खाने का

0: तर्मिला, वाकई ये अच्छा हम लोगों ने आज लिया है कोकम को।
1: और जापानी माचा का नाम तो बहुत है, लेकिन हमारे हल्दी दूध भी कम नहीं है दोस्तों। और कहते हैं कि रोगों से लड़ने वाले तत्व इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। हल्दी में पाए जाने वाले कर्क्यूमिन प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने वाले सबसे प्रभावशाली तत्वों में से एक गिना जाता है।
0: जी बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं कर्क्यूमिन। भाई हमने बचपन में भी हल्दी तेल का तो खूब प्रयोग किया ही है त्वचा के लिए, और दूध में हल्दी डाल कर भी हम लोगों ने पी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक स्टाइलिश नाम चाहिए तो हम इसको वैसे भी आजकल हल्दी टर्मरिक लाते भी तो
0: हाँ,
1: बोलते हैं।
0: बिल्कुल जी, जो हम घर में माँ और दादी हमें बनाकर देती थी ना दूध उबाल कर हल्दी, रात को कहती थी भाई चोट लगी है तो इसे पी लो, अंदर की चोट ठीक हो जाएगी। तो उसका जो थोड़ा सा फैंसी सा सजा धजा जो नाम है वो है टर्मरिक लाते, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हम तो ये कहेंगे भाई सेहत का मतलब मंजुला केवल महंगे लेबल नहीं है बल्कि पोषण है, सही पोषण है ना।
1: बिल्कुल सही। और विदेशी सुपर फूड अच्छे हो सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो भारतीय विकल्पों से बेहतर हो,
0: और क्योंकि भारतीय विकल्प तो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं हमारे, अधिक ताजे हैं, स्थानीय हैं, किफायती हैं और पोषण से भरपूर है, है ना।
1: और इसलिए अगली बार जब कोई इम्पोर्टेड सुपर फूड की चर्चा करे तो एक नजर अपनी रसोई और अपने खेतों की ओर भी जरूर डालिए, क्योंकि सुपर फूड विदेश में ही नहीं हमारी अपनी थाली में है। स्वस्थ रहिए, स्वदेशी अपनाइए और समझदारी से चुनिए।

0: और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मधुमती से।
1: और मेरे पास एक और संदेश आ गया है मंजुला, वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार जी कह रहे हैं कि मुझे तो बरसात की याद आ रही है और मरीन ड्राइव पर घूमना याद आ रहा है और अच्छे खान पान के स्टॉल

0: हॉल पर गरम गरम वड़ा पाव की मौज लेने की याद आ रही है भाई, वाह। और एक और संदेश हमारे पास आया है, सुरभि हमारे साथ जुड़ गई हैं मयूर विहार से। वो कहती हैं कि बारिश के बाद आसमान में खिलता हुआ इंद्रधनुष मुझे बहुत पसंद है, ऐसा लगता है सुंदर रंगों से आसमान पर मुस्कान उकेर दी। और वो कहती हैं कि ये सिखाता है जिंदगी में चाहे कितनी भी बारिश हो, मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद रंगों से भरी एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है। इसे जब भी इंद्रधनुष दिखाई देता है तो मैं कुछ पल रुक कर उसे निहारना नहीं भूलती। और एक बात और मैं कहूंगी मंजुला, कि ये कार्यक्रम आज हमने बिल्कुल बारिश के गीतों पर रखा, बारिश की बातें करी। हम कहेंगे कि भारत में हमारे देश में संतुलित बारिश रहे, सब जगह बारिश हो और अन्न धन के देवता प्रसन्न हो, हमारा देश विकास की प्रगति पर चलता रहे।
1: बिल्कुल सही। आप सबका मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म है प्यासा सावन।
1: और इसी के साथ मंजुला अपने इस कार्यक्रम को, इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे, खुश रहिए और दूसरों की मुस्कान का कारण बनिए।
0: डीजे मंजुला और
1: रश्मि कुकरेती को इजाजत।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य।

0: सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक बीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he considers it his good fortune to have had repeated opportunities to connect with Lord Shiva at various sacred sites. Addressing at the Prambanan Temple in Yogyakarta, Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hatkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlings, holds special significance with him, having direct responsibility for its development. Mr. Modi also noted that his parliamentary constituency, that is Kashi, Varanasi, is home to Kashi Vishwanath Mahadev,

एक प्रेम कहानी है और मुख्य रूप से विधवा पुनर्विवाह और समाज में महिलाओं की स्थिति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में पद्मिनी कोल्हापुरे मनोरमा यानी रमा की भूमिका में हैं और ऋषि कपूर देवधर यानी देव के किरदार में शामिल हैं।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, 30 जुलाई 1982 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम रोग उस वर्ष में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सुभाष घई की फिल्म विधाता के बाद इस फिल्म ने कमाई में दूसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही फिल्म का संगीत बहुत ही शानदार और सदाबहार रहा। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी द्वारा रचित था और गीत संतोष आनंद नरेंद्र शर्मा और आमिर कजलबश द्वारा लिखा गया था। तीसवें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राज कपूर साहब को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए, पद्मिनी कोल्हापुरे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और संतोष आनंद जी को गीत मोहब्बत है क्या चीज के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए। बाकी और 8 कैटेगरीज फिल्मफेयर के लिए नॉमिनेटेड रहे। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी सुपरहिट रही होगी।

श्रोताओं, फिल्म प्रेम रोग की लेखिका कामना चंद्रा की ये पहली फिल्म थी। कामना चंद्रा ने अपनी माँ से एक रियल लाइफ कहानी सुनी थी। उन्होंने ये कहानी राज कपूर साहब को सुनाने का फैसला किया। उन दिनों राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे। जब कामना चंद्रा ने ये कहानी राज साहब को सुनाई तो पहले वो और बाकी लोग उनके बात से सहमत नहीं हुए, पर बाद में राज साहब ने फिल्म बनाने का फैसला किया। पर कामना चंद्रा की कहानी अधूरी थी। फिल्म के इंटरवल के बाद जो कुछ भी दिखाया गया है उसे राज कपूर साहब ने खुद से जोड़कर फिल्म की कहानी को पूरा किया और नतीजा ये निकला कि फिल्म एक मिसाल बन गई।

दोस्तों, इस फिल्म में ऋषि कपूर ने अपनी सादगी भरी और दिल छू लेने वाली अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। वहीं पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने किरदार में मासूमियत और मजबूती दोनों को बड़ी खूबसूरती से निभाया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तब वो महज केवल 17 वर्ष की ही थी। इसके साथ शम्मी कपूर जैसे कलाकारों ने भी कहानी को गरिमा और गहराई दी।

श्रोताओं, प्रेम रोग सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये समाज में संवेदनशीलता और बदलाव का संदेश देने वाली फिल्म थी। समीक्षकों की सराहना और व्यावसायिक सफलता दोनों ही इस फिल्म को मिली, जिसने राज कपूर साहब की विरासत को और मजबूत किया। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारने वाले सीन के लिए 8 रीटेक लेने पड़े थे। फिल्म में शमी कपूर ने राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म में पहली बार काम किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस में 25 हफ्ते तक चली थी और सिल्वर जुबली साबित हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में मैं अमन देव। पहला चुनाव में खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो नाल योगकार्त्या विच ब्रह्मानंद मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर की संभाल विच भारत की भागीदारी दोहां देशों की सांझी सभ्याचारक विरासत में दर्शाती है। श्री मोदी अपने तीन देशों के दौरे के दूजे पड़ाते अज मेलबोर्न पहुंचणगे। ईरान ने अमरीकी हमलों तों बाद अमरीकी फौजी टिकाणे ते जवाबी हमले किए ने। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन दक्षण पछमी मानसून के पंजाब हरियाणा

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। ब्रिक्स खवातीन की दो रोजा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है, ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सके। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमले के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के हमराह आज योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का क्लासिकी योग्यकार्ता रक्स के साथ रिवायती अंदाज में खैरमकदम किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के गुनागुन सकाफती विरसे की झलक पेश की गई। दोनों रहनुमाओं ने 9वीं सदी के मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया इश्तराक के जरिए तहफ्फुज की जारी कोशिशों का जायजा लेने से पहले मंदिर की नक्काशी का भी जायजा लिया। एक मुश्तरका बयान में सदर प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि परम्बानंद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान सदियों पुराने

0: इस्लामी तहजीबी रिश्तों की एक अलामत है। उन्होंने मंदिर कम्प्लेक्स के तहफ़ और बहाली के लिए मदद पर भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सकाफत दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए एक पुल के तौर पर काम कर रही है। योग्यकर्ता में परम्बानंद मंदिर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने अपने दौरे को रूहानियत से भरपूर और यादगार करार दिया। उन्होंने तकरीबन 1200 साल तक इस शानदार विरासत का तहफ़ करने पर इंडोनेशिया के आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मंदिर के तहफ़ में भारत की शराकतदारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत का इजहार होता है।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाए हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वो मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात पर भगवान शिव के साथ जुड़ने के मुतअद्दिद मौके मिलने को अपनी अच्छी किस्मत समझते हैं। इंडोनेशिया में योग्यकर्ता के मकाम पर परम्बानंद मंदिर में एक इज्तमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हटकेश्वर महादेव के वतन वाडनगर में पैदा हुए थे और ये कि 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उनके लिए खास अहमियत का हामिल है क्योंकि वो इसकी तामीर व तरक्की से बराह रास्त जुड़े हुए हैं।
1: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने आला तालीम के शोबे में ताउन को उसत देने की गरज से एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट AIIM बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला समुद्र पार कैंपस कायम करेगा। ये कैंपस मशरकी जावा में सिंगोसारी खसूसी इकतसादी जोन में कायम किया जाएगा। इस कैंपस से पूरे आसियान खित्ते के तलबा और पेशावर अफराद के मुस्तफीद होने का इम्कान है। IIM बेंगलुरु के डायरेक्टर इंचार्ज यू दिनेश कुमार ने कहा कि इस पहल कदमी से तालीम के शोबे में इश्तराक और ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचने वाले हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शरीक होंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे जो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात का एक मजबूत सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत नई दिल्ली में आसियान भारत की अशिया की तिजारत से मुतालिक ज्वाइंट कमेटी AITIGA की 13वीं मीटिंग की मेजबानी कर रहा है ताकि आसियान भारत तिजारती समझौते का मजीद जायजा लिया जा सके। ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग और इससे मुतालिका मीटिंगें इस माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें कुछ अरकान वहां मौजूद हैं जबकि बाज़ अरकान वर्चुअल तरीके से मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ज्वाइंट कमेटी की बदौलत ज़ेली कमेटियों को उनके काम से मुतल्लिक शोबों के बारे में कलीदी नवीयत की रहनुमाई फराहम हुई है। ब्रिक्स मुल्कों के खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। ये इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 बजे शुरू हुआ। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर मुमलिकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरका बयान को मंजूरी दी जाएगी। इजलास के मकाम के नज़दीक देही तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तगजिया और तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की क़यादत वाली तरक्की में भारत की हुसूलियाबियों को उजागर करने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया है। ईरान ने अपने सूबे होर्मुज़गान और बंदरगाही शहर महाशहर पर अमरीकी हमलों के बाद अमरीका की फौजी तनसीबात पर जवाबी हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया और फिजाइया ने अमरीका के 85 फौजी ठिकानों

0: स्थानों पर मिसाइल और ड्रोन से मुश्तरका कार्रवाई की। इस दौरान बहरीन की वजारत दाखिला ने अपने मुल्क के बाशिंदों से कहा है कि सायरन बजने के बाद पनाहगाहों में चले जाएं। इससे पहले अमरीका ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले तिजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। उधर खाम तेल की आलमी कीमतों में आज 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान ताजा कशीदगी की वजह से जंगबंदी को खतरा लाहक हो गया है। इस जंगबंदी की वजह से तवानाई की आलमी मंडियों को थोड़ी राहत मिली थी। वजारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने वेनेजुएला में 24 जून को आए दोहरे शदीद जलजले के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वहां भारत की जानिब से भेजी गई इमदाद की तौसीख करने के लिए वेनेजुएला हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से रियासत में शदीद बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के बारे में टेलीफोन पर बात की, जिसके दौरान जनाब शाह ने सूरत हाल से निमटने में वजीर आला को मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जनाब शाह ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से भी रियासत में शदीद बारिश और पानी जमा होने से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में बात की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती सरकार को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वैंकूवर में पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 3-4 से हराकर 1954 के बाद से पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक मैच में अटलांटा में अर्जेंटीना मिस्र को 2-3 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योगिकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। ब्रिक्स खवातीन की दो रोजा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है, ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सके। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमले के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया है। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta. Says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS Women Ministerial meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. They also viewed the temple's intricate carvings before witnessing the ongoing

0: Revolutionary Guard Corps IRGC Navy and Aerospace Forces carried out a joint missile and drone operation targeting 85 U.S. military facilities. The reported targets included Salman Port, the U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain, and the Al El Salem Air Base in Kuwait. Iranian media also quoted an IRGC spokesperson as saying that the country's air defense systems had shot down a U.S. MQ-9 drone over Bushehr province. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75 and 87 cents per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71 and 96 cents per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temples conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in 3rd India-Australia Annual Summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of U.S. strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beats Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध

0: और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभात

0: मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइना चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य

0: में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में

0: वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दरअसल पेंटेस आकाशवाणी दिल्ली कना नेशनल न्यूज सर्विस प्रोग्राम उनपिन मीडियम वेविका अचस आकाशवाणी कारगिली कना जिरन्युत वक्सपो निमे तुसुत निजनाफेत संसुक कसता एनसीआरटी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम निन मजत उमंग

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।

0: क्यों?
1: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं। लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये

0: न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
1: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
0: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
0: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
1: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
0: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े वैसे वैसे आदिवासी

0: अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नेजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
2: अच्छा अच्छा,

0: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए। आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
1: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
0: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
1: वाकई कमाल है।
0: अभ्यास से गलतियां नहीं होती। हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
1: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
0: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
0: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
1: सच?
2: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: Dersak payantes NCRT sponsor program yeninut pin umang medium wave ka ngaches akashwani kadgilikana serinut waxpot tusut sumsansuk kasata akashwani dehli kana urdu service program un relebe tirilela dang bazat

सामिन नादा, आप ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

रसिया मसीह खान सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज़ में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छुट्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स खवातीन की दो रोजा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में तआवुन को मुस्तहकम बनाया जा सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब से मुतासरा कई रियासतों के वज़रा आला से फोन पर बात की और मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया है। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सद प्राबोवो सुबियांतो के हमरा आज योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। वजीर आजम का क्लासिकी योग्यकार्ता रक्स के साथ रवायती अंदाज में खैर मकदम किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के गुनागुन सकाफती विरसे की झलक पेश की गई। दोनों रहनुमाओं ने 9वीं सदी के मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां वजीर आजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया इश्तराक के जरिए तहफ्फुज़ की जारी कोशिशों का जायजा लेने से पहले मंदिर की नक्काशी का भी जायजा लिया। एक मुश्तरक बयान में सदर प्राबोवो सुबियांतो ने कहा कि परम्बानंद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी रिश्तों की एक अलामत है। उन्होंने मंदिर कॉम्प्लेक्स के तहफ्फुज़ और बहाली के लिए मदद पर भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सकाफत दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए एक पुल के तौर पर काम कर रही है। योग्यकार्ता में परम्बानंद मंदिर में खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने अपने दौरे को रूहानियत से भरपूर और यादगार करार दिया। उन्होंने तकरीबन 1200 साल तक इस शानदार विरसे का तहफ्फुज़ करने पर इंडोनेशिया के आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मंदिर के तहफ्फुज़ में भारत की शराकतदारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरक सकाफती विरासत का इजहार होता है।

भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अक्वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निमटने के लिए फैसला कुन और मजबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरक बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचने वाले हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शरीक होंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों को एक बड़े जलसे से खिताब भी करेंगे, जो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात का एक मजबूत सुतून है। भारत और इंडोनेशिया ने आला तालीम के शोबे में तआवुन को वसअत देने की गरज से एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला समंदर पार कैंपस कायम करेगा। इस कैंपस से पूरे आसियान खित्ते के तलबा और पेशेवर अफराद के मुस्तफीद होने का इम्कान है। IIM बेंगलुरु के डायरेक्टर इंचार्ज यू दिनेश कुमार ने कहा कि इस पहल कदमी से तालीम के शोबे में इश्तराक और ताउन को मुस्तकम बनाया जा सकेगा। जिद्दतराजी और सलाहियत साजी को फरोग मिलेगा और भारत और इंडोनेशिया के दरमियान कलीदी साझेदारी को मजीद तकवियत हासिल होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ब्रिक्स मुल्कों की खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। यह इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 बजे शुरू हुआ है। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर ममलकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरका बयान को मंजूरी दी जाएगी। इजलास के मकाम के नज़दीक देही तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तग़ज़िया और तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की क़ियादत वाली तरक्की में भारत की हुसूलियाबियों को उजागर करने के लिए नुमाइश का अहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से रियासत में शदीद बारिश और सैलाब जैसे सूरतहाल के बारे में टेलीफोन पर बात की, जिसके दौरान जनाब शाह ने सूरतहाल से निमटने में वजीर आला को मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। महाराष्ट्र के बहुत से हिस्से गुज़श्ता चंद रोज से जारी मूसलाधार बारिश से मुतासिर हुए हैं। जनाब शाह ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से भी रियासत में शदीद बारिश और पानी जमा होने से पैदा होने वाली सूरतहाल के बारे में बात की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती सरकार को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। ईरान ने अपने सूबे हॉर्मुज़गान और बंदरगाही शहर मशहर पर अमरीकी हमलों के बाद अमरीका की फौजी तनसीबात पर जवाबी हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया और फजाइया ने अमरीका के 85 फौजी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से मुश्तरक कार्रवाई की। इस दौरान बहरीन की वजारत दाखिला ने अपने मुल्क के बाशिंदों से कहा है कि सायरन बजने के बाद पनाहगाहों में चले जाएं। इससे पहले अमरीका ने आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले तजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। उधर खाम तेल की आलमी कीमतों में आज 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा कशीदगी की वजह से जंगबंदी को खतरा लाइक हो गया है। इस जंगबंदी की वजह से तवानाई की आलमी मंडियों को थोड़ी राहत मिली थी। भारत नई दिल्ली में आसियान भारत की अशिया की तजारत से मुतालिक ज्वाइंट कमेटी AITIGA की 13वीं मीटिंग की मेजबानी कर रहा है, ताकि आसियान भारत तजारती समझौते का मजीद जायजा लिया जा सके। ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग और इससे मुतलका मीटिंगें इस महीने की 6 तारीख से 10 तारीख तक मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें कुछ अरकान वहां मौजूद हैं, जबकि बाज़ अरकान वर्चुअल तरीके से

0: मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। कॉमर्स और सनअत की वजारत ने कहा है कि ज्वाइंट कमेटी की बदौलत जैली कमेटियों को उनके काम से मुतालिक शोबों के बारे में कलीदी नौयत की रहनुमाई फराहम हुई है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आज कहा है कि शोपियां के चनापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तक तौर पर अंजाम दी। शारजा से पाकिस्तान के शहर कराची जाने वाला एक बोइंग 737 तैयारा नेविगेशन सिस्टम में खराबी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनकता होने के बाद लापता हो गया है। इस तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। लद्दाख में आज से मानसून का आगाज हो गया है। वहां आज सभी जिलों के बहुत से मकामात पर रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वैनकूवर में पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 3-4 गोल से हरा कर 1954 के बाद से पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। उधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में अटलांटा में अर्जेंटीना मिस्र को 2-3 गोल से हरा कर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें। एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज़ में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स खवातीन की दो रोजा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में तआवुन को मुस्तहकम बनाया जा सके। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब से मुतासरा कई रियासतों के वज़रा आला से फोन पर बात की और मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1170 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में मोहरा फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है विजू शाह ने।

प्रोग्राम की अगली पेशकश कविता कृष्ण मूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का यह नगमा, नगमा निगार जावेद अख्तर, मौसीकार आर डी बर्मन।

0: कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे तिलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में, मौसीकाती संदेश चंदेलिया। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मैं आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है जनाब आफाक अहमद की तहरीर का दर्रा में सवेरा का दूसरा और आखिरी हिस्सा।
1: सुबह बखैर जन्नत के बासियों, गुड मॉर्निंग तस्लीमात मिजाज गिरामी, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, लगता है पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। आप हजरात अगर इसकी मदद करने का वादा करें तो मैं कुछ अर्ज करूं।
2: हम जानते हैं आप क्या कहेंगे।
1: यानी हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या?
3: ये किसी सांवली महबूबा की तलाश में हिंदुस्तान आए हैं, यही ना?
2: लेकिन आपको किस तरह मालूम हुआ? जब से आप लोग जन्नत की फजा से निकले हैं उस वक्त से अब तक की पूरी फिल्म हमारे पास मौजूद है।
1: ऐसा ही बायोस्कोप जैसा कि हम जन्नत में देखते हैं।
3: जी हाँ, हम चाहें तो जन्नत

0: फिल्म बना लें, मगर हम बैन अलाक्वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं करते।
1: हालांकि ये लोग बगैर वीजा की दुनिया में आए हैं।
2: मगर आप बेफिक्र रहें, हम लोग यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, मिलने आए हैं, वापस चले जाएंगे।
0: आप कुछ मेरा जिक्र कर रहे थे।
1: आप अपनी महबूबा का हुलिया बता दें तो हम यहीं बुलवा देंगे।
0: मगर मैंने तो उसको देखा ही नहीं, वो मेरे ख्यालों में बसती है।
3: उसकी कोई तस्वीर तो होगी आपके जहन में, हम वैसी ही एक औरत पेश कर देंगे।
0: उनका जिस्म और उम्र तो इनकी तरह होगी।
1: और
4: मेरी तरह?
1: और
2: तुम अपनी नज्म का एक बंद सुना दो, इससे इन्हें अंदाजा हो जाएगा।
0: बहुत बेहतर। My mistress's eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red.
2: इसका तर्जमा सुनाओ, ये हिंदुस्तानी है।
0: सॉरी, बहुत बेहतर। मेरे महबूब की आंखें सूरज की तरह रोशन नहीं, मूंगा उसके होंठों से कहीं ज्यादा सुर्ख है, ताजा गिरती हुई बर्फ की सफेदी, उसके जिस्म में घुली हुई सांवली शाम के सामने मांद पड़ जाती है। अगर सर के बालों को तार कहा जाता तो उसके सर पर काले तार उगते हैं।
3: मिस सजीला, तुम समझ गई?
4: जी हाँ, बिल्कुल समझ गई।
0: मगर इनका रंग कुछ गोरा है।
1: तो क्या हुआ, रंग तो 5 मिनट में काला हो सकता है।
2: या इलाही, ये माजरा क्या है?
4: मैं अभी आ रही हूँ।
2: जरा जल्दी आइएगा।
3: अभी से इतने बेकरार है आप
0: जानते हैं हमें बिछड़े हुए 1100 साल हो चुके हैं।
2: बेखुदी बे सबब नहीं गालिब। खूबसूरत खातून बता रही थी कि दुनिया की आबादी बहुत बढ़ गई है, मगर लोग चलते फिरते नजर क्यों नहीं आते?
1: चले फिरें कहां साहब, जगह कहां है?
2: क्या मतलब, क्या लोग चहलकदमी के लिए नहीं जाते? ताजा हवा सेहत के लिए बहुत मुफीद है।
3: मिर्जा गालिब, आप जन्नत की खुली हवा से आ रहे हैं, इसलिए सोच भी नहीं सकते कि हमारी हालत क्या है।
2: कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं।
1: पूरी दुनिया को जिसमें समंदर, पहाड़ और दरिया भी शामिल हैं, अगर आबादी में तकसीम करें तो 100 आदमियों के हिस्से में 1 मुरब्बा गज जमीन आती है।
0: ओह गॉड, तो फिर लोग जीते कैसे हैं?
3: 30,000 खरब लोग मुश्तरी और यूरेनस में भेजे जा चुके हैं। जोहरा और जोहल में नई बस्तियां बसाई जा रही हैं।
2: गर्ज मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई।
1: आसानी कैसी साहब, अगर कुछ और ना किया गया और आइंदा 200 साल तक यही सूरत हाल रही तो इस कायनात के किसी सयारे में भी दिल धरने के लिए जगह ना रहेगी।
0: तो आप कुछ कीजिएगा साहब?
3: कर तो रहे हैं। हर हफ्ते 1 करोड़ लोगों को खुदकशी के लिए मजबूर किया जाता है।
2: खुदकशी? वल्ला आप तो जुल्म में उस चरखे नाहिंजार से भी आगे बढ़ गए।
0: ओ जजमेंट, thou art fled to brutish beasts and men have lost their reasons.
3: ये जुल्म नहीं मजबूरी है।
1: अगर हम ये ना करें तो जानते हैं क्या होगा?
0: क्या होगा?
3: इस जमीन पर रहने वाले लोग अपने बहुत से तरक्याती मंसूबों से इतनी गर्मी पैदा कर रहे हैं कि अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की तमाम बर्फ पिघल जाएगी और पूरी दुनिया में 250 फीट गहरा पानी हो जाएगा।
2: क्या खूबसूरत मंजर होगा।
1: मगर ये सोच लीजिए, उस वक्त तमाम आबादी जन्नत में मुंतकिल हो जाएगी और आप 3 कमरों के फ्लैट में जो जन्नत में ऐश कर रहे हैं वो सब खौफ बनकर रह जाएगा।
2: मगर आप जानते हैं कि मैं जन्नत में सिर्फ 1 गालिब हूँ।
3: हो गए, मगर जमीन पर इस वक्त 65,07,372 गालिब है।
2: क्या?
1: जी हाँ,

0: हमारे पास 1 करोड़ शेक्सपियर हैं, 60 लाख अरस्तु हैं। जो छोटे शायर और फलसफी हैं उनकी तादाद न पूछो तो बेहतर है।
1: ब्रदर, हमारे दोस्त अरस्तु हेवन से आए थे, उनका क्या हुआ?
0: वो अपनी कैजुअल लीव खत्म होने से पहले वापस लौट गए, बल्कि कई हजार अरस्तु वो अपने साथ ले गए। कह रहे थे कि वहां फिलॉसफी डिपार्टमेंट में बहुत सी जगह खाली है।
1: एक बात बताइए, जब शायरों की तादाद इतनी है तो फिर यहां मुशायरे कैसे होते होंगे और लोग किस मैदान में सुनने के लिए जमा होते होंगे?
0: एक मुशायरा 30 साल से जारी है और अभी तो उस्तादों की बारी भी नहीं आई।
1: 30 साल से जारी है, लोग बैठे सुन रहे हैं।
0: बैठा कौन है? मैंने कहा ना, जमीन पर फालतू 1 इंच जमीन नहीं है और ना लोगों के पास फुर्सत।
1: तो फिर ये कैसा मुशायरा है जिसमें सुनने वाले ही नहीं और ना दाद देने वाले?
0: वो मुशायरा जितने लोग सुन रहे हैं, अगर एक साथ दाद देने लगे तो यकीन मानिए दुनिया की 1/3 आबादी बहरी हो जाएगी।
1: पता नहीं आप क्या कह रहे हैं।
0: बात यह है कि मुशायरा टीवी के चैनल 738 से मुसलसल दिखाया जा रहा है। जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने शायरों की फहरिस्त जो 7 जिल्दों में मिलती है वो खरीद ली है। इसमें हर शायर के पढ़ने का वक्त और दिन दिया हुआ है। जो जिसको सुनना चाहता है सुन लेता है। 40 लाख शायर तो मुशायरे के दौरान अपनी गजल सुनाने के इंतजार में इस दुनिया से चल बसे।
2: अब तुम समझे गालिब, पिछले दिनों जन्नत में शायरों का नंबर अचानक क्यों बढ़ गया?
0: आप लोग बेफिक्र रहिए, जो हालत इस वक्त दुनिया की है आइंदा 50 वर्ष में जन्नत की भी हो जाएगी।
1: ऐसा कसम न कीजिएगा, हम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी।
0: अगर हमने कोई ऐसी दवा इजाद न की जिससे मौत की शरह अचानक बढ़ जाए, पता नहीं खुद हमारा क्या होगा।
2: मरना क्या मुश्किल है?
0: जमीन पर बहुत मुश्किल है। मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की की है आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे अगर इंसान मर भी जाए तो जमीन पर ना उसे दबाने के लिए जगह है और ना जलाने के लिए।
1: क्या कह रहे हैं आप? तो क्या अब लोग बेगौरव कफन पार्सल कर दिए जाते हैं?
0: दुनिया का तमाम कूड़ा जिसमें मुर्दे भी शामिल है सब जमीन के ऊपर खला में फेंक दिए जाते हैं।
2: बदबू के रास्ते पर्दा उठ गया मेरे दोस्त।
1: वल्लाह, बड़ी गैर शायराना हरकत है।
0: मजबूरी सब कुछ करा देती है, मगर अब शायद ये भी न कर पाए।
2: क्यों?
0: तुमने नया साइंस गैजेट नहीं पढ़ा?
2: नहीं, क्या लिखा था इसमें?
0: खला में इतनी गंदगी हो गई है कि सूरज की पूरी गर्मी जमीन तक न पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है।
2: अच्छा है साहब, अब दिल्ली के इस बेरहम सूरज से तो बच सकेंगे।
0: ये सोच लीजिए, अगर ऐसा हो गया तो फिर से एक बार बर्फ का दौर आ जाएगा।
1: मैं समझा नहीं।
0: हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, दुनिया तकरीबन तबाह हो जाएगी।
1: लगता है तबाही तो आपका मुकद्दर बन चुकी है।
2: मगर ये सब किया धरा आप लोगों का है।
1: आप कम से कम मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। मेरी हर औलाद मेरी जिंदगी में ही मर गई थी।
0: हम आपको इल्जाम दे भी नहीं सकते, आप हमारे मेहमान हैं। मगर आपसे एक दरख्वास्त है।
1: फरमाइए।
0: जब वापस जाए तो कम से कम 5 लाख गालिब अपने साथ लेते जाइए।
1: देखिए, आपके पास 2-4 करोड़ जौक मौजूद हों तो उनमें से जितने चाहे भेज दीजिए, मगर किसी और गालिब को जन्नत में नहीं घुसने दूंगा मैं।
0: हमें तो आबादी से गर्ज है, किसी को भी ले जाओ।
2: वो खातून नहीं आई।
1: आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब।
0: वो आ रही है।
2: आपको कैसे मालूम?
0: ये बल्ब देखिए, जब कोई 50 मंजिल नीचे ही होता है तो बल्ब रोशन हो जाता है।
2: हम कौन सी मंजिल पर हैं?
0: 875वीं मंजिल पर।
1: क्या जन्नत में तो अभी 3री मंजिल से आगे नहीं बढ़े हैं?
0: ये बिल्डिंग 2000 स्टोरीज की है, दो हजार

0: हजार?
1: हाँ, मगर ऊपर की 1000 मंजिल में सिर्फ आलात, मशीनें, जनरेटर और स्टोर्स हैं। नीचे की 1000 मंजिल में लोग रहते हैं।
0: मगर वो बाजार वगैरह नहीं जाते?
1: बाजार है ही नहीं। लोग इन्हीं फ्लैटों में पैदा होते हैं, जवान होते हैं और यहीं मर जाते हैं।
0: आपका मतलब है वो बाहर घूमने नहीं जाते?
1: मैं दुनिया का सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोगों में से एक हूँ, लेकिन मेरा कुल सफर जमीन पर 200 गज से ज्यादा नहीं होगा।
0: तो फिर आप सफर कहाँ करते हैं?
1: इसी बिल्डिंग में, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, यही हमारी जिंदगी है।
0: मेरा कुछ दम घुट रहा है।
1: आप ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे होंगे?
0: क्या अब ऑक्सीजन भी कम हो गया है?
1: जी हाँ, ऑक्सीजन इस्तेमाल ज्यादा हो रही है और पैदा कम।
0: ऐसा क्यों हुआ?
1: रिहायशी मंसूबों के लिए हमने अरबों पेड़ कटवा डाले, उससे पूरा निजाम गड़बड़ हो गया।
2: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
0: गालिब, उधर देखो, वो आ गई। खबरदार, ये कोई दूसरी औरत लगती है। मैं उसे दिल की आंख से देख रहा हूँ। यही है वो शांगली महबूबा जो मेरे तस्वुर की खूबसूरत वादियों से भटकते हुए इस दुनिया में आ गई। मैं सिर्फ इसी के लिए दुनिया में आया था गालिब, सिर्फ इसी के लिए।
3: तुम खातून के तेवर देखकर बात करो।
0: इस हसीना के चेहरे पर गुस्सा कम है और मोहब्बत ज्यादा है।
1: कहिए, हम आपको अकेला छोड़ दें?
3: आप इन्हें माफ कर दें। आपने गालिबन सुना होगा, मैंने कहा था इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब।
1: मगर आपको पता नहीं, हमारी दुनिया में इश्क सबसे बड़ा जुर्म है।
0: आप कोई सरकारी अफसर तो नहीं?
1: हमारे यहाँ सब आदमी सरकारी हैं, मगर यह कानून आप पर लागू नहीं होगा। आप सैयाह हैं।
0: शुक्र है, थैंक गॉड।
1: आओ बड़ी आंख, हम चलते हैं। आज 5 दिन हो गए, सिर्फ 20 लाख मरे हैं। 2 दिन में 80 लाख का इंतजाम करना है।
0: अगर आपको नागवार न गुजरे तो एक बात कहूं।
1: कहिए।
0: आप दुनिया को बचाने के लिए कोई और इंतजाम नहीं कर सकते? लोगों के मरने की खबर सुनकर मेरा कलेजा कांपने लगता है। 57 का सदर देखे हुए हो ना?
3: गलत ठीक कहते हैं। दिस इज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल।
1: हमें भी ये दफ्तरी काम बुरा लगता है। हर हफ्ते मरने वालों के लिए टेंडर तलब करने पड़ते हैं।
0: भग रहा हूँ जनूम, क्या क्या कुछ कुछ न समझी खुदा करे कोई।
1: हम समझाए देते हैं। हमारे साइंसदान एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गया तो शायद हम बच जाएं।
0: वो कैसे?
1: हम चाहते हैं कि सरजमीन पर फिर से 20वीं सदी लौट आए।
3: कॉल बैक यस्टरडे, बिग टाइम रिटर्न।
0: शेख पीर, तुम बहुत हठधर्मी हो।
3: हाँ, फरमाइए किबला, आप क्या कह रहे थे?
1: अगर उस सदी में पहुंचकर हमने आबादी को काबू कर लिया तो फिर ये दुनिया बच जाएगी।
0: मगर आपने सुना नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं।
1: ये आपके जमाने की सच्चाई थी। हमने वक्त को काबू में कर लिया है।
0: अगर ऐसा ही है तो फिर आप 19वीं सदी में वापस क्यों नहीं जाते?
1: मेरा ख्याल है अगर आप 16वीं सदी में वापस जाएं तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। और मैं भी उन लोगों से हिसाब बराबर कर लूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी में मेरी कद्र नहीं की।
0: मगर तब तो मुझे पैदा होने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा।
1: हम 20वीं सदी से पीछे नहीं जाएंगे, हमारी रिसर्च काउंसिल ने यही तय किया है।
0: आप वहां खड़ी क्या मुस्कुरा रही हैं? यहाँ आइए।
2: शुक्र है, आपको मेरा ख्याल तो आया।
1: मैं सोच रहा था, यू डोंट लीव पीपल अलोन। कोई बात नहीं, हम लोग जा

0: रहे हैं।
1: मुझे भी थोड़ी सी तनहाई मयसर हो जाती, जमीन पर आ गया हूं, एक गजल कहना चाहता हूं।
0: आप बराबर के कमरे में चले जाइए, देखिए जब ये बटन रोशन हो जाए तो समझ लीजिए कि हुकूमत कोई जरूरी ऐलान करने वाली है, फौरन इसको दबा दीजिए।
1: अगर हमें कुछ जरूरत हो
2: आप ये बड़ा बटन दबा दीजिए।

0: हमारा टीवी उससे बेहतर है। इसमें आप जिस रंग में चाहे उसी रंग के लिबास में किरदार को देख सकते हैं।
1: अगर कस्टम वाले परेशान न करें तो एक मैं भी ले जाऊंगा।
2: एक कस्टम्स ऑफिसर मेरे दोस्त हैं, ड्यूटी फ्री भिजवा देंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे।
1: बराबर के कमरे में जाने का रास्ता?
0: ये बटन। इस बटन को दबाते ही एक मौसीकी उभरेगी। जब तक वो खत्म न हो जाए अंदर न जाइएगा, क्योंकि उस वक्त तक ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई वहां नहीं होगी।
1: ठीक है, मैं बटन दबाता हूं।

0: Doubt thou the stars are fire. Doubt that sun doth move. Doubt truth to be a liar. But never doubt I love.
1: आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं?
0: जी हाँ, प्यारी खातून, ये अल्फाज मेरे ही हैं।
1: मगर आप हुकूमत की तौहीन के जुर्म में पकड़े जा सकते हैं।
0: मगर ऐसा मैंने क्या कहा?
1: इश्क और एक से ज्यादा बच्चा जमीन के संगीन तरीन जराइम है।
0: मगर हम तो तन्हा है। Nobody is listening.
1: हुजूर, हमारी बातचीत कम से कम 200 जगह रिकॉर्ड हो रही होगी।
0: ऐसा क्यों?
1: अगर ऐसा न हो तो इश्क की बीमारी आम हो जाए।
0: तो क्या अब जमीन पर कोई इश्क नहीं करता?
1: आमतौर से तो नहीं, सिर्फ उन लोगों को कुछ दिन के लिए परमिट मिलता है जो 40 साल की उम्र से पहले खुद को मरने के लिए पेश कर देते हैं।
0: अगरचे आपका हुस्न सदा बहार है और आप एक सुरमई शाम की तरह हसीन हैं, फिर भी अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूं?
1: मेरी उम्र 83 साल है।
0: देखिए, आप मजाक कर रही हैं।
1: ये रहा मेरा बायोडाटा, आप देख सकते हैं।
0: मगर आप देखने में तो मुश्किल से 20 साल की लगती हैं।
1: ये प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। अगर ना आप मुझे मेरे असली रूप में देख लें तो मेरी खाल इसी तरह लटकती नजर आएगी जिस तरह खूंटी पर ढीले ढाले कपड़े।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ।
1: क्या हुआ?
0: वुमन शुड बी व्हाट दे सीम।
1: आप मेरी उम्र को दिल की नजर से देखिए ना।
0: ये कैसे हो सकता है? मुझे लौटकर जन्नत भी तो जाना है।
1: तो फिर आप मुझे क्या मशवरा देते हैं?
0: हमारे यहाँ 83 साल की उम्र में लोग सिर्फ इबादत करते हैं, इश्क नहीं।
1: सोच लीजिए, मैंने तो सिर्फ आपकी खातिर अपना रंग सांवला करवाया है।
0: क्या आप अपनी उम्र थोड़ी घटा नहीं सकते?
1: उससे क्या होगा?
0: अगर लोगों को पता चल गया तो वो मजाक उड़ाएंगे।
1: आप अभी तक लोगों की परवाह करते हैं?
0: आदत सी हो गई है। ये दस्तूर दुनिया से जन्नत में चला गया है।
1: देखिए, ये बटन सुर्ख हो रहा है, हुकूमत कोई ऐलान करने जा रही है। आइए सुने।
2: एक जरूरी ऐलान सुनिए। अभी अभी हमें मुश्तरी की तजर्बगाह से इत्तला मिली है कि एक इंतहाई शदीद बर्फानी तूफान जमीन की तरफ बढ़ रहा है जिसमें कम अज कम 1 अरब लोगों के मरने की उम्मीद है। तमाम हुकूमतों को हिदायत की जाती है कि वो बचाव का कोई इंतजाम न करें। जिस इलाके में मौत की शरह सबसे ज्यादा होगी वहां के बचे खचे लोगों को मेयारी ऑक्सीजन की 1 बोतल मुफ्त दी जाएगी जो संभाल कर खर्च करने पर 1 हफ्ते तक चल सकती है। ऐलान खत्म हुआ।
3: शेखबीर, तुमने ऐलान सुना?
0: हाँ।
3: जल्दी से भाग चलो।
0: कहाँ?
3: जन्नत।
0: मगर क्यों?
3: अगर इतने बहुत से लोग जन्नत

0: में गए तो जरूर कस्टोडियन हमारे खाली फ्लैटों पर कब्जा कर लेगी।
1: मगर क्या पता ये सब जन्नत में ना जाए।
2: याद है उस खौफनाक जलजले के बाद जन्नत की पार्लियामेंट में कानून पास हो गया था कि हादसे में मरने वालों को जरूर जन्नत मिले।
1: तब तो आप लोगों का जाना जरूरी है।
0: तो फिर ऐ खूबसूरत आंख, बड़ी आंख से मुलाकात करवा दो।
1: आप लोग मुझे भी साथ ले चलेंगे ना?
0: ये तुम शेख पीर से पूछो।
2: मेरा ख्याल है मुश्किल होगी क्योंकि बेन जॉनसन, मेरियो और बेकन भी मेरे साथ ठहरे हुए हैं और मेरा फ्लैट बहुत छोटा है।
0: ये क्या कह रहे हो शेख पीर? ले चलो ना अपने साथ।
2: चुप रहो, ये 83 बरस की है, 83 years old।
0: मेरी खुदा।
1: लीजिए, मैंने बड़ी आंख से आपको मिला दिया, बात कीजिए।
0: भाई साहब, आप हमारी वापसी का जल्दी बंदोबस्त कीजिए। मैं इतने दिन तो कलकत्ते के सफर में भी बाहर नहीं रहा।
2: देखिए, हमारे वीजा पर एंट्री भी नहीं है, अगर यहाँ ज्यादा टाइम लग गया तो मुश्किल हो सकती है।
3: ठीक है, 30 सेकंड बाद आपके कमरे की बालकनी में एक तश्तरी की शक्ल का जहाज उतरेगा, आप उसमें बैठ जाइए। उसमें एक नीला बटन होगा, उसको दबा दीजिए, एक हल्का सा धमाका होगा, लेकिन डरिएगा नहीं, आप फौरन जन्नत के दरवाजे पर होंगे।
2: लेकिन आप इस खातून को वापस बुला लीजिए।
3: क्यों?
0: ये हमारे साथ जाने पर इसरार कर रही हैं। अगर हम कहीं अगवा के झूठे इल्जाम में पकड़े गए तो बड़ी बदनामी होगी।
3: आप घबराइए नहीं, वो साथ नहीं जाएंगे। आपका जहाज पहुंच गया है, बालकनी पर जाइए।

0: जी रहा नीला बटन शेख पीर तुम दबाओ
1: नहीं नहीं तुम
0: अच्छी बात है जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू आई भला को टाल

0: अल्लाह, ये आवाज
1: दारोगा जन्नत, दरवाजा खोलो।
0: अजर उठो, क्या कह रहे हो तुम?
1: असर? कौन असर? मैं मिर्जा गालिब हूँ।
0: क्या हो गया है आपको? जागिए ना।
1: तुम और वो शेख पीर कहाँ गया? और वो जुजिला बेगम?
0: क्या अब आप पराई बहू बेटियों के ख्वाब देखने लगे हैं? नसीब फूट गए मेरे।
1: नसीब तो नहीं बेगम, लगता है सुराही टूट गई है।
0: सत्यानाश, अरे सारी दरी चौपट हो गई।
1: और मेरी किताबें? अरे बेगम लपक कर उठाओ तो इन्हें।
0: ये लो।
1: दीवाने गालिब, ओफो ये तो सारा भीग गया।
0: और ये
1: हैमलेट, ओफो और बढ़ती हुई आबादी, ये भी तो भीग गई।
0: आपको किताबों की पड़ी है? दिन रात दीवाने गालिब, हैमलेट और बढ़ती हुई आबादी जैसी किताबों में सर खपाई करते रहते हो। सारी दरी चौपट हो गई, सोते सोते बच्चों की तरह हाथ मारकर सुराई गिरा दी।
1: गुस्सा ना करो बेगम, ये बताओ हमारे कितने बच्चे हैं?
0: मुझे ये बेवक्त मजाक अच्छा नहीं लगता।
1: मैं संजीदा हूँ।
0: आपको पता नहीं?
1: क्या बताऊँ बेगम, कितना भयानक ख्वाब था। जल्दी से बताओ, मेरे हाथ पांव काबू में नहीं है।
0: ऐसा क्या देख लिया? अमजद के अलावा कौन है हमारा?
1: अरे हाँ, याद आया, शुक्र है मालिक तेरा।
0: किस बात का शुक्र?
1: कुछ नहीं, सो जाओ।
0: सारी दरी खराब कर दी और कहते हैं सो जाओ।
1: अरे परवाह न करो बेगम, दिल की सफाई का ख्याल रखो।

0: घर की सफाई मैं कर लूंगा।
1: आपके ख्याल में इसको सुबह तक ऐसे ही पड़ा रहने दूं?
0: ये भी ठीक है। अब अगर उठी गई हो तो सफाई के बाद एक कप चाय भी बना देना।
1: क्या?
0: कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं। मैं जा गया हूँ इसलिए समझा कि शायद सवेरा हो गया है।

सामिन भी आप सुन रहे थे डॉक्टर आफाक अहमद की तहरीर का दरदरामी सवेरा का दूसरा और आखिरी हिस्सा। हिस्सा लेने वाले फनकार थे इंदु रैना, शशि किरण छाबड़ा, ज्योति रैना, श्याम नागपाल, राणा सज्जाद, अब्दुल रशीद, विजय कुमार मट्टू और मनोहर परोथी। पेशकश मनोहर परोथी की थी, माविन थे मोतीलाल कचरू। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में लोफर फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज़ में, अनुरोध फिल्म का नगमा, नगमा निगारान बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म का नगमा। और सामने लीजिए सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में मजबूर फिल्म की ये पेशकश।

अब सुनिए महमूद रफी की आवाज में मजरू का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया है उषा खन्ना ने। फिल्म है साजन की।

आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफुज में भारत की हिस्सेदारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरक सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं, जहां वो भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स खवातीन की दो रोजा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्राबुवो सुबियांतो के हमरा आज योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। वजीर अजम का क्लासिकी योग्यकार्ता रक्स के साथ रिवायती अंदाज में खैर मकदम किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के गुनागुन सकाफती विरसे की झलक पेश की गई। दोनों रहनुमाओं ने नवी सदी के मंदिर कम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां वजीर अजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया इश्ताक के जरिए तहफुज की जारी कोशिशों का जायजा लेने से पहले मंदिर की नक्काशी का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ मुकदस मकाम पर भगवान शिव के साथ जुड़ने के मुतादिद मौके मिलने को अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। इंडोनेशिया में योग्यकार्ता के मकाम पर परम्बानंद मंदिर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर अजम ने कहा कि वो हटकेश्वर महादेव के वतन वाडनगर में पैदा हुए थे और ये के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उनके लिए खास अहमियत है, क्योंकि वो उसकी तामीर और तरक्की से बराबर जुड़े हुए हैं। भारत और इंडोनेशिया ने आला तालीम के शोबे में तआवुन को वसअत देने की गरज से एक अहम कदम उठाया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला समुद्र पार कैंपस कायम करेगा। ये कैंपस मशरकी जावा में शंगसारी खसूसी इकतसादी जोन में कायम किया जाएगा। इस कैंपस से पूरे आसियान खित्ते के तलबा और पेशा वाराना अफराद के मुस्तफिद होने का इम्कान है। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वजीर अजम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्राबुवो सुबियांतो के दरमियान दो तरफा बातचीत के बाद जारी एक मुश्तरक बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में ताउन को गहरा करने से इत्तफाक किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचने वाले हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरी सालाना सरबरा मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शरीक होंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्ता कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से खिताब भी करेंगे, जो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात का एक मजबूत सतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ब्रिक्स मुल्कों की खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक समेत और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। ये इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 शुरू हुआ। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर मुमलिकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरक बयान को मंजूरी

0: दी जाएगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से रियासत में शदीद बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के बारे में टेलीफोन पर बात की, जिसके दौरान जनाब शाह ने सूरत हाल से निपटने में वजीर आला को मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। महाराष्ट्र के बहुत से हिस्से गुज़िश्ता चंद रोज से जारी मूसलाधार बारिश से मुतासिर हुए हैं। जनाब शाह ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से भी रियासत में शदीद बारिश और पानी जमा होने से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में बात की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती सरकार को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आज कहा है कि शोपियां के चन्नापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। आकाशवाणी से बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी के बड्डी ने कहा कि मौके से हथियार और गोली बारूद समेत दहशतगर्द की लाश बरामद कर ली गई है, जिसकी शनाख्त का काम जारी है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने वेनेजुएला में 24 जून को आए दोहरे शदीद जलजले के बाद ऑपरेशन अमिस्टार्ट के तहत वहां भारत की जानिब से भेजी गई इमदाद की तौसीक करने के लिए वेनेजुएला हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब जायसवाल ने कहा कि इस रिलीफ मिशन से दोनों मुल्कों के दरमियान जारी दोस्ती की अक्कासी होती है। लद्दाख में आज से मानसून का आगाज हो गया है। वहां आज सभी जिलों के बहुत से मकाम पर रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, जबकि लद्दाख के बुलंद मकाम और पहाड़ी दर्रों में बर्फबारी हो रही है और बहुत कम फासले तक ही साफ नजर आ रहा है। लद्दाख के महकमा मौसमियात ने मकामी नालों में अचानक और तेज पानी के बहाव और अचानक सैलाब आने के खतरे की वार्निंग जारी की है। केरलम के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इरनाकुलम, उदुकी, थ्रिसूर, मल्लापुरम, कोझिकोड और वायनाड जिलों में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनके अलावा कुछ जिलों में इक्का दुक्का मकामात पर मूसलाधार बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ईरान ने अपने सूबे होर्मुज़गान और बंदरगाही शहर मशहर पर अमरीकी हमलों के बाद अमरीका की फौजी तरजीबात पर जवाबी हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया और फजाइया ने अमरीका के 85 फौजी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से मुश्तरका कार्रवाई की। इस दौरान बहरीन की वजारत दाखिला ने अपने मुल्क के बाशिंदों से कहा है कि सायरन बजने के बाद पनागाहों में चले जाएं। इससे पहले अमरीका ने आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले तजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। खाम तेल की आलमी कीमतों में आज 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान ताजा कशीदगी की वजह से जंगबंदी को खतरा लायक हो गया है। इस जंगबंदी की वजह से तवानाई की आलमी मंडियों को थोड़ी राहत मिली थी। शारजा से पाकिस्तान के शहर कराची जाने वाले एक बोइंग 737 तैयारा नेविगेशन सिस्टम में खराबी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनकता होने के बाद लापता हो गया। इस तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। K2 एयरबेस का यह तैयारा 27 साल पुराना है। इम्कान है कि यह तैयारा कराची के जुनूब मगरिब में समुद्र में गिरकर तबाह हो गया। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वैंकूवर में पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 3-4 गोल से हराकर 1954 के बाद पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। अब क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को को आलमी विरासत के मकाम परम्बानन मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज में भारत की हिस्सेदारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं, जहां वो भारत ऑस्ट्रेलिया की 30वीं सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।

दर्शक पैंतीस सदाकत प्रोग्राम यानी नुत पिन मीडियम विविका अचास आकाशवाणी कारगिली कना सिरिनुत कसता अची दिरिंग फ्रचुपायत पी प्रोग्रामी छिरपोला यन मजत

0: दरअसल पयंतेस पुर्गी खबर लाइन न्यूत पिन मीडियम वेविका अचैस आकाशवाणी कारगिली कना जर न्यूत वक्सपो तुसु तो गाने मिनट सुमचु संसु कसता प्रोग्राम यन मसत रेलुक्सी हगो
1: Person with disability je bana mazur mazur ngatis ngatis ka tenza chinde mazur gafru mazur nambos ke ta ha uden ruk chan chachin ki hoy physical mental intellectual developmental sensory impairment chin matlab wenu kami gon chin din chanu jese ngatis physical ilta na mental ilta na ha dun ga mas khue matlab gafru in na ka to khue daily activities sa jese khue ga chuk la shi bana ka to den effect an chin chu khue silcha sa nu effect an chin chu khue ga society la sha nu in na ka to khue effect ha chin chu अब नातेस माजूर द हा माजूर याना स्केस ना सयों चिन चोक स्केस ना सयों चिन चोक इफेक्ट हा चिन चोक या देर गैप ना स्केस रि गैप ना या इफेक्ट ऑन चिन चोक द कोल्डन रि गैप ना को इफेक्ट पोन चिन चोक अगर नातेस डिसेबिलिटी नातेस अगर टाइप खसी के जरना का तो सबसे पहला फिजिकल डिसेबिलिटी ऑन चिन चोक फिजिकल डिसेबिलिटी से बना नाते जैसे को मूवमेंट पे को हरकत न थों चिन चोक खुए माजूर पु खुए हरकत में थोंचिन चुक खुए फिजिकल लास वास खजे खो लास बना का तो उदी चीज ना थोंचिन चुक या नतस अगर नतस साइंस टाइम नतस जर ना का तो कि दी एग्जांपल खचिक चीन चीज ना का तो जैसे सेरेब्रल पल्सी जर छिन देन खुए डिसेबिलिटी थोंचिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जरे लिंब डिफरेंसेस जरे जैसे क्रोनिक हेल्थ कंडीशन जैसे खचिक यो ना एपिलेप्सी एंड देन डुल बांगियन चमेन हरकत मूवमेंट एंड खुए थोंचिन दी डिसेबिलिटी है चिन जो दूसरा अगर नतस सेंसरी जर छिन हाँ सेंसरियाँ चीज है जिसमें ना खाची का छोटा इफेक्ट पुखे छोटचास प्यां थोंचास प्यां या कोई सेंसरी प्रोग्रेस कोई दुन सानों ने चाहे मेंसो से मां कोई इफेक्ट है चीन सो जैसे को न्यान मां छोर बयानो अते एग्जांपल ताना का तो हाँ खो छोटचास मेंसो खाची फ्रू खाची को मत दे छोर में छोर बात जो डिसेबिलिटी चीज चीन खाची को उनचीन ब्लेंडनेस मैं थोंचा मैन हाँ खाची को चीन सेंसरी डिसऑर्डर खाची को माना चाह चीज पे बांग इन चमें चाचन दिन पता है चमें चाना का तो दिन गांव में उनचीन जो सेंसरी डिसेबिलिटी से अगर नाते थर्ड पहुंचीन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है नुक दिन या खाची का उनचीन देख प्रॉब्लम सॉल्व बांग इन चमें मैं जैसे कैलकुलेशन बांग उन चमें जैसे खोई मतलब मेन पुखो कन्फ्यूजन है लुशिन मैं हरकत बांग इन चमें जैसे नाते एग्जाम्पल बताना का तो डॉन सिंड्रोम फ्रेजल एक्स सिंड्रोम जिन गांव में दी एग्जाम्पल है उनचिन जो चौथा उनचिन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज रिन डेवलपमेंटल उ अरंग अति इफेक्ट ग्रोथ ना डेवलपमेंट ना इफेक्ट है चिन जो फ्रून जैसे खाची सुनते होंगे छो होंगे खाची की मतलब शॉर्ट होते मतलब हाइट है छाचीन जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आनो या गावे सोशल लाशी ना का तो खबा है चे मैं जो दिन अनु जैसे इफेक्ट हो चिन सोक जैसे ना तो यदि एग्जांपल ताना का तो ऑटिज्म जर ऑटिज्म है उचिन दिन आता है हुई तो चीन लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे खुद डिस कैलकुलेशन दे जैसे कैलकुलेशन बामा बिल्कुल हो जाए मैथ्स हाँ जैसे कमजोर हो मत उससे चीन जैसे कोई स्पीच स्पेरान था खाची हो मैंने खान क्रिस्टन से बताऊं मुझे ओ जैसे लैंग्वेज खाची के मस पैरा खोरा हो जाए मैं मतलब हर इशारे का स्पेरा था चीन दी डिसऑर्डर नो चीन सो खुद अगर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हम का तो छाना अगर आते हैं पंचवास जन का तो साइकोलॉजिकल आउं चिन साइकोलॉजिकल या आते हैं इमोशनल डिसेबिलिटीज रहते हैं दिमागी तोरी जैसे दिमागी तोरी हम ज्यादा इफेक्ट पहुंचे तो कोई बिहेवियर का खाची को उन तक चुप चाहते ना दुख था
2: सुनाम्बोस पेरा
1: था वो दून एबिलिटी आउं चिन मैं कि खोज कोई दिमाग है ना कोई देना इफेक्ट चियोत पना खोहा स्पेरा ताऊ मामी इनमें कोई बिहेवियर है ना जैसे आते समय दे दिप्रो मन अजीब चीज़ दो कोई उसमें स्पेरा ताऊ मामी नोक जरूरत है उतन कोई कोई वजह का चाह उन चमें कोई दिमाग दिमाग पु कमजोर उत पना दिमाग पे नोक कोई एबिलिटी उत पना एबनॉर्मलिटी शियोत पना दी इफेक्ट पसंद सिंह जैसे बिहेवियर जर इमोशनल खचिक मना मन एकदम इमोशनल हो चीन हाँ खचिक मेंटल हेल्थ का हो चीन हरकत बचिन देखो अलग अलग हरकत बचिन छा दुन मतलब कोई दिमाग कमजोरी की वजह का खुलदान जनास कोई कमजोरी की वजह का दूसरों से हाँ जैसे खाची हो मदे जो एंजाइटी एंजाइटी डिसऑर्डर को एग्जांपल इन जैसे खाची एकदम एंजाइटी छे दो अंदाज से कोई दिमाग का इफेक्ट होत पना सोसिन जैसे खाची डिप्रेशन ज्यादा लूसे मतलब नाते छोड़ो दरे से दुनिया नु योत जैसे साग कंपटीशन होत देना योत हर चीज होत डिप्रेशन होत पर जो है अगर साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी है तो ना खची की अलग हो चिन मैं डिप्रेशन है ना ऑलरेडी हो चिन खुद का चाह मेद ना का तो खुद दिमागी दन सा ना सी खुद इफेक्ट पे वजह का डिप्रेशन है चिन दुना खुद बिहेवियरल डिसऑर्डर है चिन हा

0: जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटी हो चीन लास्ट पे कहाँ से ना देख दे हो चीन जैसे एक एबिलिटी हो ऑलरेडी डिसेबिलिटी हो दूसरा यहाँ एक आए हो चीन मतलब एक एक से ज्यादा मोर देन वन हो चीन में डिसेबिलिटी अगर नाते दी का सुन जाने का तो नाते जस्ट कहे नाते डिसेबिलिटी डिस्कस बस नी दी नी का पूछिन जर का तो नाते स्टीन का तो हां तीन नाते था मैं नु कुदन अलग अलग बस जर बात जैसे नाते डिसेबिलिटी पहला बिफोर बात आ हां छिन हां स्के बस पहला नु चीज ओ यों छ सिन हां ओ दो जस नाते जैसे साइंस टाइम नाते प्रीनेटल जस दे हां उदे नु जैसे जेनेटिक कंडीशन मन इफेक्ट आ छनाती अगर नाती खचिचे फैमिली मेंबर आ चिचे यो ना का तो उदन एक जनरेशन में सेकंड जनरेशन आ थोंचिन नाता हां दूसरा नाते जैसे प्रेगनेंसी नुगा सुच इन्फेक्शियस डिजीज सो उदु संख का काफी खुई फ्री का असर ताचिन सुख
1: Dari sakpayan tes program yang ini pinner deluksi hago medium wave kan ngajas akashwani kargili kana serinut. Kasata program yang mazat Sherba Nachung program prachukhan point Asghar Ali program producer Gulzar Hussein.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान

0: कि उसे बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने ये विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वर्षा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is en route to Australia after concluding his three-day successful visit to Indonesia. During his three-day visit to Australia, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit with his counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Discussion between the two leaders will cover cooperation in areas including critical minerals, the cybersecurity domain, supply chain resilience,

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते।
1: बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।

अल्लाह खान लखनवी खुए फ्यकपुस उजबिरस खान इन यनखान कुन ठाठा खान आबाद सोंसेर ग्यपुना खुआ स्मिंग खुम छाना खुंगस लिंग्स दोना सेरहंगला छावा गोजुक बस खान यक्षिक लिंग्सला छेन योत्सना खों रेदाक्षिक न थुकसुक दे रेदाक्ष पे रिचो वथम से और गोला पोंगिस बसलो ठाठा खान इस कुले कुलिया कुक्षो आबाद बसेर ग्यपुना चिकतन दोना हकनिस आबाद बासुंग कुलिया आबाद बा युत्पेंग यर्ग्यस छेन योंग मना ठाठा खान ला हुकूमत बे संबा योंग सुक दे तुस्पेंग सुरीर यमसु ना द्रासीर यमसु डेस्पी मलसे का जंगल युत खान अम्मा दी जंगल पेंग मीजे सिंगेक युत्पिन दीर यमसु निस्का थुक्खन दे मलसे का छो फोंगशिक दरियांग युत जरदुक दी छो फोंगस्पे का दी मीजे सिंगेव दुक्से रियमछे थमासगा बिस्पेक छाना छोंग से सोंसे दे बिस्पे का हमला बात सुक ठाठा खानी दुनपा अशी पाउनला द्यू संबा योंस की ठाठा खानी लखना दी मीजे सिंगेव कतो सतना हुकूमत पोखे लगा योंग मल समोचाचिन द्यू चुक्स बसे फोकारी खानदान पूरेगी हुकूमत कायम बे लम छचाइन खोए ठाठा खान ला दी श्मिक्स पुतांग सुके दी मी जे सिंगेव यरी लगन सोत दी लस पेफिया ठाठा खान इस रन लुक्स बसुक दी लस पेफिया ठाठा खान इस गार गोस्पी ग्रलुन सक गंगरगिया बसुक लमना दरे बिलर गु युल आबाद युत दे तुस्पेंग दे का गुरुंगपा सुंजबीक चा सुख से युत पिनसुक दे मलसे का बिलार गुस यंगस्पा सेन चिक थोंसुक दे बिने का दी युल्पुआ बिलार गु मिया तक्सखन दे युल्पु दरे इन्नांग बिलार गु मिया जरेन युत बिलार गुआ छर्मा अपिचिगिस ठाठा खान ला दी युल्पे गनादुन ला मसोंग जरे गक्स पी फ्रालुग बस खान दुना दे अपी जरसुक रग्यमछे थमा मीजी सिंगे ग्योत ठाठा खान इस जरसु अपी दिया मीजे सिंगे उ सतपना नायों सिन अपी ठाठा खान ला टिसुक दे सिंगे उ सत पिफिया ची सामान रिक गिग्रल बसे यों सित ठाठा खान इलागा दे मीजे सिंगे उ सत पिचांग मौजून सामान चिक लगा मित खान अपी ठाठा खान ला दे मीजे सिंगे उ सत पिफिया सेती दरगंग इसका चप चप बसे युत खान जोंग सिंग इसका चप चप बस युत खान बरगंग इस उच्चो से क्यों जर्चुक अपीस यंग जस सिंगे उस हमला बाचिक टंगपा लग पाओ ना दी सेती बरगंग इसका सिंगे खैंग सुख से तुम यंग योपा लग पाओ ना रर्गी न यंबो सिंगे का हमला बोझ जरे अपीस सबसे तंग खान ठाठा खान इस दी अपीस सबसे तंग्स खान तम निस्कुए का अमल बसे दी सिंगे उ सत पैनुक लखचप सोंसुक दी लसिर पो बसे ठाठा खानी हम्बाव न क्षुत पो मिमांग सी बरंग त्रक्सल न यंबो गुन खान सुंग खुई मालिक पुज ठाठा खानी लगा हुकूमत पो तत्सुक कुले कुलिया सोत शकर चिकतनी हुकूमत पो ठाठा खानी लगा योंगसुक अम्मा असलियत पो दूर तक्सपा छेदकी लदाखला जोमून कौम आबाद युपिनसुक यरकंदियोंनिस हमला बसे रग्याल थोपसे रग्यापुना युलसुंग मकम्यूनिस पूरिक चिकतनला लेपसे तिसु गंगासुक चोचो कुंजदम चो पलदन ला दीश मकम्यूनिस जगक्सखा जुने खेरसुक दी रग्यापुना द्यून सक यरकनला कृतसुंसुक द्यून खेरे रग्यापुना ठाठा खान निस अलाके चिकतन गंगमी का हुकूमत बे लखचेप सुखन रिवायत उन्हें द्यू थोबिन मित पेन ठाठा खान ला दी अलाकाओं ने का कब्जा बसे हुकूमत तंग में सूस रुख बस या गचुगा लगा योंजरे चिकतन का कब्जा सोंसे हुकूमत लगा योंगचस पे खाना द्यू सबूत सोंसेन यरकंदीश मकम्यून नयंबो ठाठा खानी ओशन डेस्लुक्स युत खान इंसुक देफिया खुआ हुकूमत पु यंग लुक से थोफ खान सुंग दी हुकूमत पु ठाठा खानी लगा योंग सेर ग्यप पुना खोंगेस खरुली ए फरकावा

0: सुरीर यम सुए दुना द्रासीर यम सु द्रसे दे खरखोरी जंगल साक साफ बसे जिंग्स चुसुक दे का खुरी ओमा चिकपा फोनु आबाद बसुक दे फिया दी मलसावा ओमा चिकथंग मिगा तखसुक दरे इन नांग दी मलसावा ओमा चिकथंग मिगा लुस्योत दीर ग्यापुना पुएन आबाद बेफिया दे खरखोरी जंगल सक साफ बसुक दे कना लद्दाख दुना स्कर्दोना मीमांस क्यों से द्यूनिका सुख शुक सुख खुरी क्षुत पु थो शुक सुख दक्षन सकपा कुक्षो सदर मकाम दुनार ग्यल सार चो से युत्खन अम्मा हुकूमत पुआ क्षुत चन छेन योंग मचिक ठठा खान इस युरबल तगा यर्ग्यस बावा गोजुक बसुक देफिया कुक्षो ना सदर मकाम पु कुल्या युरबल तगी फिकर खरला क्यों से खंडोरी दारुल हुकूमत पो कायम बासुम खंडोरी दरे इन नंग मौजूद युत ठठाखानी नस्ली मिंगब्यूंग राजा अकबर खानी नंग पुदिया खरपुना थुतियुत दे छन पो भ्रक चिगिका शुको से ब्रिसे दरे इन नंग मौजूद युत सुरु पश्क्यो मी रियम छे खरखोरी युलगंगमा ठठाखानी कब्जियंग योंग मजिक ठठाखानिस ट्रिस्पोन लाल तसे खुरी संबाज गिरसुक ता वक़त पोंसोंसुक नियन खानुन ए योंगमी प्रोग्राम मुनियानुक दे थुतपु यन तंसकप लेपचुपी फ्रलुक्सबेत ये खुदाए फगरीन
1: दरे सपायंतेस जनरल टॉक चिंगने नुतपिन मीडियम वेविका ngache आकाशवाणी कारगिली कना सेरिनुत कसतार सखमस्तत खेगंगन मसेत अकबर अली खान इसकतें
2: بسم الله الرحمن الرحيم

ने जरूरी कक्षा ने सुजू चे जर न का तो दरे बाहर ने यों खाने दे चीज सुनी ना चामसी केमिकल ले चामसी की दे कसमान था सो चामसी लूट केमिकल इस्तेमाल बस हो दो आता पता हूँ मामे छा न का तो दे हनु और टॉक्सिन्स खुदा ना खास्ता योद न का तो दो कुले कुले आ तिर गुया नु जमा सों से एक दिन आता डॉक्टर जस्टिन क्या कैंसर सों सु क्या ट्यूमर सों सु दून एकदम

0: chuli yakpa anuk uski de content po mangmo yot vitamin B17 ni chana world me jo cancer ki patient usko use kar rahe ju ngati diet anuk mangmo aid ben jo jo health conscious hote hai hunter sui yakpa ni antes ngates den ka kadulta narik shopping me brood zarkhan hone anuk itna unki bitter karne li demand yonduk unka itna waha se sell chat ki is cheez ke liye use karne ke liye ata ja amygdalin zarkhan ponambo yang ji hydrogen cyanide jin ji poisonous substance jan yon chin ju ngata odur snot khang yon chin do ka to mangmo chana wo lethal bi hai ngata tak sa ngat khas kar ni kansan yot ngari sayet khani achinomon ka ka phone honambo to khol pata yot ki ngata se pacha jo se tas bo se balang shir shir re chana ha isme
1: do ta chorba pa ju ki ngati ga matse ga tinta ve sonman la tinta na pache chutong zin
0: pache bilkul ju kuch insects se jese ki ngati chong tap khani strain po wo bache se bilkul control kar rahe hum formal na requirement baat ki bache se organical bhi ho jate poisonous substance hydrogen cyanide lekin isme science hai ab usme bhi abhi conflict hai discussion chal raha hai scientist ki usme wahi kuch process hote hai usse uska ye khatam ho jata hai jo poison ho amygdalin ki kuch aise kuch process se chale jate to uska zeher khatam ho jata hai lekin phir bhi ngata chi bar goshin kam maqdar anukatulin narik uska wo असर नहीं होगा जो छाना ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट बेदगास अमान ला की राय फ्रूनी डाइट अनुप यंतेस खंते सु खंते सु नाला सुमसुम dekana jbijbi dekana gaga ap ros jan phunla zahnyok bachas zan zend kyunki ye me khud kar rahe hu ya chana de anuk chish hindu diet is tarah ta ande ju diet aapko ye khana chahiye aapko ye nahi khana chahiye ek ka unique biochemical hote hai har ek ki body den da alag chyon chin daksang ata man ngata ek layman ki tarah hum dekhte hain science mein nahi jaake khachi samjh zan jana phrama lus pamindu ga khachi man hawa bhi lag jate wo hawa bhi kha le to zer bangyan chemin ma ki strictly आपको ये डाइट खाना चाहिए आपको ये नहीं खाना चाहिए जरे क्योंकि अपने अपने राय बॉडी का ये होता है कि वो कैसे एक्सेप्ट करता है आप उस दे डाइट पूछो खंटे स्वीस पर आने पिंजो नाल नाल अपशुनी उसको एक्सेप्ट नहीं करते खंटे दो खंटे टू टू बेन दुख जरे आते का नहीं तो कि अपना अपना बॉडी कैसे एक्सेप्ट करते ये होता है टेस्ट कैसे बनते साल चीजों से नगा गरीब सुन ला खंटे सु तंग से नी बोमो माने किन दुख पर खंटे सु क्यों खंटे सु थों ना मन दुख से जख पर बोशिन खा तो उसको खोल मंगमोज देने अनुक खंतसु क्यों से ना घर में हम लॉक करके रखते बुसा दरा टेस्ट मालदान मत खो तंग ना खो दरा और दों स्नेक स्नेक इंजेक्शन अपने अपने बॉडी की या टेस्ट के हिसाब से डाइट पोंगाते एक्सेप्ट बचिन
1: बक्षिस जो छन यारी दिस पेरे का ना ता तक्स पास में जो की ना तेस खंते चुली ता ना खो खंते चुली गत बाजेन ची खो खचीज ना पटा ना चते फांगत खचीज ना खातो चते या पेवान ची तंग से हलमन जी चेत बाजेर चेत हाजो छन यारी दी के ना ता तक्स pasun ki di khante chuli nga ti mingna lek sina fan kyo ten chuk chana du nga te se god ma ba ni khante yakpa nga te su nga ti zanto te nga te skol bar gushin
0: bilkul kol cha ju nga sa daksa zes de nga te daksa chuli mar ping se cham si pene ni chong et chana chong wa ba chis na la nga te nga ti nang e zanjo si bos po jak se chong cha ju science is mazer na nga ta nga thon yo ju na pa si min is zeren me cho ju nga ches na cha tse tse so se jitik siyad lus pat pin nga ches na खांते चुली मार जो से अच्छा जूस सेहत लुस पत पिन खेंता ना चाम सी तंग ना रिक चाम सी का ना मार का जग ना चाम सी दी डायर गैला तंग ना रिक सेहत माने छा मिंदु जर में क्यों दिन दु जर ना ता छी मी ने सोरे दे जो हमेशा मार दोनिया नु चाम सी ना ता फन मी न्यूट्रिएंट यो तिन सु जु चाम सी ना ता दे डाइट ने नु फन के यो तिन सु दे फिया ना ती ना पा सी मीन ना ती आता अपन चंग नाथ में बचाम से ठेक ठेक कर लूँ सिंह तो जो जी गाती दी डाइटून डोंट स्पी चार्ज दे जुका सब शीस
1: पक्षी जो मन रहते हैं मोमोस छने यार इस दिया यार इस पर चिक चिक यंग आता है तो पिंग जो कि गाती चिमी में ना जो सुना पास इतना स्लाच छात से जो से दुख पत पिंजरे बना छना दीची लो खोरा गाता है मेलर सीयर जेन चीज अक्सर था जो छना दरें यार इस सुना मोस कि गाता है यंग में हिसाब पंगती से कना बिंग मी जानू गाता है दोन मर्गो शिंजरे जेस छना दरें गाता है जो loba lo ngati de nasi zanun gang maski ale daksang ata nasi pena chlorig mene daksang ati jingun la get pat pamet hajo sna pasing ati amani kana ata chor bat kinga cha na cha ce ce zat pinzere dari ang ata chor endo ju ki shejo te ni kana di meler se an zebana cha ce ce ang lek sina ati rgo phan mot bi sman chor jo zere ndo pa ju disko la sieres pres pa basemo
0: ah bilkul ju ngata daksa ji cha ce ce ngata ek to ngati sehatifia ji ngata max pushe set pura

0: दरअसल पयंतेस पुर्गी खबरों लांग यानी न्यूट पिन मीडियम वेविका अचेस आकाशवाणी कारगिली कना सिरिन्यूत
1: रंगी बिजनेस उन लस्के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलन उन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब पिल्ले पीस कप्स मांगमो दरने यंतेस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंगिन से होत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय,

0: आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
3: علمس بنی نوح انسانی رخص بچائی حضرت علی مرتضی علیہ السلام۔

मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। अब हम आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू में खबरें और तबसरा रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर अजम का दौरा इंडोनेशिया मुकम्मल, ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। वजीर दाखला ने जम्मू डिवीजन में शदीद बारिशों के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए मरकज की तरफ से हर मुमकिन तआवुन का दिलाया यकीन। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने का दोहराया अजम। और जम्मू कश्मीर सरकार तालीम के शोबे को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअजम। SKICC श्रीनगर में तालीमी कन्क्लेव 2026 से वजीर आला का खिताब। अब खबरें तफसील के साथ। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए ऐसे चैलेंजों से बैनुल अक्वामी कवानीन के तहत निमटने के लिए मुश्तरिका कोशिशों पर जोर दिया है।

0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दोतरफा बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्रबावो सुबियांतो ने आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दी गई तंजीमों और अफराद के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाइयां करने पर जोर दिया। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के सदर के साथ युगाकात्रा में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मकाम प्रम्बनन मंदिर का दौरा किया, जहां उनका रिवायती तौर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वहां शिवा मंदिर में प्रार्थना की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा,
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इंडोनेशिया का अपना सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न रवाना हुए हैं। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खैर सगाली के जज्बे के तहत इंडोनेशिया के सदर प्रबावो सुबियांतो ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हवाई अड्डे पर अलविदा किया। तर्जमान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इंडोनेशिया कई कलीदी शोबों में इश्तराक को फरोग देने के साथ साथ भारत और इंडोनेशिया के माबेन रिश्तों को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में शदीद बारिशों और तोगियानी आने के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया है। उन्होंने इस सिलसिले में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से टेलीफोन पर बातचीत करके उन्हें मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। इस बारे में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा,
2: मौसम की वजह से कुछ जगहों में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा है, बिलखसूस चिनाब वादी में और थोड़ा सा कठुआ के तरफ। उस सिलसिले में गृह मंत्री साहब ने फोन किया था हालात के बारे में पूछने के लिए और मैंने अपनी सारी जानकारी उनको दी। आगे अगर कहीं पे हमें मरकज की मदद की जरूरत होगी, मदद करने के लिए तैयार है।
0: वाजह रहे कि मूसलाधार बारिशों के नतीजे में जम्मू के बाज हिस्सों में मामूल की जिंदगी मुतासर हुई थी और अवामी सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम मसरूफ अमल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा महज एक यात्रा नहीं बल्कि एक रूहानी रियाज भी है। कौमी रोजनामा दैनिक जागरण के आज के शुमारे में शाया अपने एक मजमून में उन्होंने कहा है कि ये यात्रा हिन्दुस्तान के रूहानी शऊर, सकाफती विरसे और इंसानी अकदार की जिंदा अलामत है। एलजी ने यह मजमून सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ जी यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के तहफ्फुज और सहूलियात का खास ख्याल रखना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वो यात्रा का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने अफसरों को हिदायत दी कि यात्रा पर रवाना होने से पहले हर यात्री की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो मकामी मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर के रिवायती फनून व दस्तकारी की खूबियों का तजुर्बा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोक भवन में यात्रा से मुतल्लिक कायम कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। इस दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक 1,30,000 से जायद यात्रियों ने गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। आज दोपहर 2 बजे तक 18,764 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। बेशतर यात्री गुफा में हाजिरी देने के बाद वापस अपने घरों को लौट गए हैं। यात्री वादी की खूबसूरती के साथ साथ यहां की मेहमान नवाजी से भी काफी मुतमईन हैं।
3: मेरा नाम मोनू कुमार शर्मा है, मैं यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ। बाबा का आशीर्वाद बना रहे तो हमारा देश भी सही रहे, सुरक्षित रहे।
4: मुरादाबाद से आया हुआ हूँ, टूरिस्ट गाइड को पूरी बस को लेकर आया हुआ हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे अपनी कम से 90 जने आए हुए हैं, हम 2 बस में।
5: इंदौर से आया हूँ, मेरा नाम है जगमोहन यादव, मैं 2000 से आ रहा हूँ, ये मेरी 25वीं यात्रा है। धीरे धीरे देखते देखते जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अच्छा करा है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं सबको थैंक यू देता हूँ।
6: रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बाल्टा से लेके ऊपर केव तक बहुत अच्छे से, मतलब सब मैनेजमेंट प्रॉपरली काम कर रही है।
7: बिना तकलीफ के यहाँ पे यात्रा सुनी है, कोई भी यात्री को कोई तकलीफ नहीं आई, अच्छी तरह से पहुंची है।
0: यात्रा के आसान इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों ने हर तरह के इंतजाम

0: किए हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दरियासना जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 9,837 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी पहुंच गया। काफिले में 6,684 मर्द और 2,730 खवातीन के अलावा कई बच्चे और साधु भी शामिल हैं। इनमें से कई यात्री पहलगाम जबकि कुछ दीगर सोनमर्ग के रास्ते यात्रा करके श्री अमरनाथ जी गुफा में हाजिरी देंगे। समाज इंसाफ व एम्पावरमेंट की मरकजी वजारत ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान 23 करोड़ अफराद तक पहुंच गया है। इसके अलावा 17 लाख तालीमी इदारों को भी इस अभियान के दायरे में लाया गया है। मुतल्लिका वजारत के वजीर डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान कौमी सतह की एक पहल है जिसका मकसद नौजवानों को सेहतमंद बनाना और उनमें नज्म व जब्त पैदा करना है। उन्होंने कहा कि NMBA ने नारकोटिक्स ब्यूरो, रियासती हुकूमतों, पुलिस, NGOs और अस्पतालों को मुत्तहिद कर दिया और ये सारे इदारे मुल्क को मुनशियात से पाक करने के लिए नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी नशा मुक्त अभियान के ताल्लुक से कसूरवारों के खिलाफ पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों की कार्रवाइयां जारी हैं। इस ताल्लुक से पेश है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी।
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में तालीमी शोबे की बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वो आज SKICC श्रीनगर में बुनियाद से बुलंदी तक नामी एजुकेशन कन्क्लेव 2026 में शिरकत कर रहे थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा,
2: हमारी लगातार कोशिश है कि जहाँ पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए, खासकर जमीनी सतह पे, कटिंग एज लेवल, बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिलअप के लिए रेफर किए हैं। आजकल पोस्ट भरने में टाइम पहले से थोड़ा ज्यादा लगता है। ऑर्डर तैयार हुए, आज उनको बांटे गए और जल्द से जल्द जो है ये बच्चों को तालीम फराहम करना शुरू करें।
0: कन्क्लेव के दौरान महकमे स्कूली तालीम और आला तालीम में अमलाए जा रहे इस्लाहाती और अहम पॉलिसी इकदाम को उजागर किया गया जबकि कारहाए नुमाया अंजाम देने वाली वाले तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की गई और नौकरी पाने वाले नए लेक्चररों को तकर्री के ऑर्डर फराहम किए गए। इस कन्क्लेव ने मुतल्लिका फरीकैन को जम्मू कश्मीर में तालीमी शोबे के मुस्तकबिल को एक नई शक्ल देने के लिए एक ही प्लेटफार्म पर जमा किया है। कन्क्लेव में वजीर तालीम सकीना इत्तु भी मौजूद थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा,
3: जो हमारे लेक्चरर्स हैं, जो हमने ये सरकार बनते हुए जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हमने लगभग 600 के करीब जो लेक्चरर्स के पोस्ट थे उनको हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया था और अल्लाह का शुक्र है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मेहनत की वजह से आज जो ये रिक्रूटमेंट वहाँ बोर्ड से होके आए हैं और उसमें से आज हम यहाँ पे 113 जो हमारे लेक्चरर्स हैं उनको ये ऑर्डर जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैंड ओवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन पे जल्दी काम शुरू होगा और ये जिन बच्चों के लिए किया गया है उनको इससे काफी फायदा मिलेगा।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार आवाम के लिए एक साफ और शफाफ और जवाबदेह इंतजामिया फराहम करने की वादाबंद है। वह आज उधमपुर और कटरा के इलाकों के दौरे पर थे जहां उन्होंने तरक्याती कामों का मुआयना करने के अलावा शुमाली कमान के फौजी अस्पताल में एक जख्मी फौजी जवान की आयादत की। नायब वजीराला ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर काम की पेशरफ का जायजा लेने के अलावा अवामी राबताकारी के कुछ प्रोग्रामों में भी शिरकत की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ने आज फौज की चिनार कोर के साथ साथ इसके दीगर जैली फौजी तंजीबात का दौरा करके खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरतहाल और हद मुतारका के इलाकों में जवाबी कार्रवाईयों की तैयारियों का बरसर मौका जायजा लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑपरेशनल तैयारियों, दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाईयों, मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान तालमेल और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए गए सलामती इंतजाम के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। फौजी सरबराह ने इसके अलावा सलाहियत साजी और दीगर

0: बुनियादों पर हल किया जाएगा। डीसी बड़गाम अतर आमिर खान ने आज एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो इल्तिवा में पड़े तमाम मामलात हल करें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गांधरबल की तरफ से आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात के मुजिर असरात से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला और पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान साबिक डीडीसी चेयरपर्सन बारामुल्ला सफीना बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। डॉ अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि सफीना बेग की पार्टी में शमूलियत से पार्टी और मजबूत होगी और इलाके के लोगों के मसाइल हल होंगे। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंतखाब गांधरबल की खवातीन विंग का एक इजलास रामपुरा गांधरबल में खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिस दौरान पार्टी उमूर का तफसील से जायजा लिया गया। प्रदेश बीजेपी सदर और राज्यसभा के मेंबर सत शर्मा ने कहा है कि बीजेपी पनाहगुजीनों के इज्जत और विकार और हकूक के लिए हमेशा खड़ी रहती है। वो जम्मू में उनसे मिलने आए देवा बटाला से ताल्लुक रखने वाले पनाहगुजीनों के एक वफद से बात कर रहे थे, जिन्होंने जमीन के हकूक और मुआवजे का मुतालबा उनके सामने रखा। इसी दौरान सत शर्मा ने बीजेपी की तंजीमी अमूर का जायजा लेते हुए कहा कि यकजहती हासिल करने के बाद अब कौम परस्ती का जज्बा जम्मू कश्मीर के हर घर तक पहुंचना चाहिए। दरियासना प्रदेश बीजेपी के तंजीम अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज पार्टी ऑफिस श्रीनगर में मुनक्कदा एक प्रोग्राम के दौरान बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मरहूम बशीर अहमद शेख, वसीम बारी और उमर सुल्तान को खराज अकीदत अदा किया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:27 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:45 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर है, समीना पेश खदमत है तबसरा।
2: समीना दाब आज का तबसरा लेकर मैं शबीर उजमा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। उनका दौरा 6 जुलाई से शुरू हुआ और पहले मरहले यानी आज तक वो इंडोनेशिया के सरकारी दौरे पर रहे, जहां से वो आज ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। 8 जुलाई से 10 जुलाई तक वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। आज वो प्रभानंद मंदिर कॉम्प्लेक्स गए, जहां उन्होंने इस बहुत ही वसी मंदिर की तस्वीर अपने एक्स हैंडल से आवाम से साझा की। उनके साथ इंडोनेशिया के सदर प्रभुवो शुभियांतो भी थे। सदर प्रभुवो शुभियांतो की दावत पर ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से आज तक इंडोनेशिया के सरकारी दौरे पर रहे। ये दौरा जनवरी 2025 में हमारे मुल्क की यौम जमहूरिया की तकरीबात में सदर इंडोनेशिया के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत पर हुआ और भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत व मरबूत करने में एक अहम कदम है। इंडोनेशिया के दारुल खिलाफा जकार्ता में वजीर आजम का रस्मी इस्तकबाल हुआ और बाद अजां सदर प्रभुवो के साथ वसी दुतरफा बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया और इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए जिन्हें इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने का शर्फ हासिल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को इंडोनेशिया के सबसे ऊंचे सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने वहां मुकीम हिंदुस्तानी बाशिंदों से भी मुलाकात की। इंडोनेशिया के सदर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासी ताउन, दिफा, समुद्री सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल इकोनॉमिक, साइंस और टेक्नोलॉजी, खलाई तवानाई, सेहत, ज़राअत, तालीम, ثقافت, सियाहत और इलाकाई उमूर समेत दुतरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को और मजबूत बनाने के लिए अपने मुश्तरक अज़्म का इआदा किया और बड़े बैन अल-अक़वामी चोटी के इजलासों के दौरान बाहमी सरबराही सतह के इजलास मुनक़द करने पर इत्तेफाक किया। दोनों फरीकैन ने मौजूदा इदारा जाती मैकेनिज्म को मजबूत बनाने का भी फैसला किया, जैसा कि ज्वाइंट कमीशन इजलास, दफ्तरी खारजा की मशावरत और मुख्तलिफ वजारती मुज़ाकरात वगैरह। ये भी फैसला किया गया कि पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप्स के قیام اور قانون سازوں کے درمیان تبادلوں میں اضافے کے ذریعے پارلیمانی تعاون کو وسعت دی جائے گی. دونوں ممالک کے تھنک ٹینک، یونیورسٹیاں اور پالیسی ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو اور گہرا کریں گے. دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سمندری تعاون کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے 2025 میں منعقد ہونے والے وزرائی دفاع کے کامیاب مذاکرات کا خیر مقدم کیا اور مشترکہ فوجی مشقوں، دفاعی مقال میں اہلکاروں کے تبادلے

जय हिंद। फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए सुनने वाले तमाम सामिन की खिदमत में मेरा खुलूस भरा आदाब। तो आइए सामिन, संगीत से भरे इस प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं फिल्म बलमा से गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

अभी आपने अपराधी फिल्म में उदित नारायण को सुना। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का अगला गीत जुर्म फिल्म से मनहर और साधना सरगम की आवाज़ में, बोल है इंदिवर की और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

अभी आपने हंगामा फिल्म में ऋचा शर्मा को सुना। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का अगला गीत हम साथ साथ हैं फिल्म से। हरिहरन घनश्याम वसवानी, प्रतिमा रॉय और संतोष के मिले जुले आवाज़ों में, गीतकार है रविंदर रावल के और मौसीकी तरतीब दी है राम लक्ष्मण ने।

लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी गीत तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से सोनू निगम और तौसीफ अख्तर की आवाज़ में पयामे सादगी से लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता उबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

0: और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
1: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र

0: दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषि जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
2: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
3: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्तेस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जैस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के

0: ऊपरी आयन मंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem, Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
1: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister in a social media post said he is looking forward to talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex.

0: to 6.4%. In sports, the 8th Khelo India Youth Games 2026 will be hosted by Telangana. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia made the announcement today. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic's Linda Noskova have advanced to the women's singles semi-finals in Wimbledon. 12th seed Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semi-final with a commanding 6-3, 6-2 win over Italy's Jasmine Paolini on centre court today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. U.S. President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semifinals. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनज़ादे दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इआदा किया। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइश परवाज की है। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, से खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओनील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वज़ीर आज़म ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगू भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ जिसने एआर रहमान के मारूफ नगमे माँ तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
1: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओस के फोरम में भी शिरकत करेंगे जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म

0: मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वजीर आजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरका प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो ने मंदिर इहाते के तहफ्फुज़ और अहिया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने अपने दौरे को इंतहाई रूहानी और यादगार तजुर्बा करार दिया।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: भारत और रूस ने आज अक्वामे मुत्तहिदा, ब्रिक्स, ईएजी और शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ कसीर जहती फोरम्स पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। वज़ारत खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक भारत रूस मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग की मुश्तरका सदारत वज़ारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज और रूस के नायब वजीर खारजा दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। दोनों ममालिक ने हर किस्म की दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों, खासतौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने दहशतगर्दों, दहशतगर्द तंजीमों, उनके दरपर्दा ग्रुपों और नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया। सरफैन ने इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर अपने ख्यालात का तबादला किया और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए बाहमी तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने आज कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अस सबा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वली अहद को नेक तमन्नाएं पहुंचाई। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और कुवैत के दरमियान दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए वली अहद के अज़्म को सराहा। उन्होंने खलीजी खित्ते के ताज़ा हालात वाकयात से आगाह करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। दिफाई तहकीको तरक्की के इदारे DRDO ने आज ओडिशा के चांदीपुर में वाके मरबूत आजमाइशी रेंज से तवील फासले के गाइडेड रॉकेट पिनाका का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा कि रॉकेट का कामयाब तजुर्बा सारिफ की जानिब से मुकर्रर करदा 60 किलोमीटर की कम अज कम रेंज पर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब आजमाइश पर DRDO, भारतीय फौज और दिफाई पैदावारी सनत को मुबारकबाद दी। उन्होंने इसे घरेलू सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड रॉकेटों के डिजाइन और तैयारी की सलाहियत में एक अहम संगे मील करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हालिया दिनों में मुल्क के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके बायस बारिश की कमी वाले अजला की तादाद 262 से कम होकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में एलनीनो के मुमकिन असरात पर मुनक़िदा आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जून में 33% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई थी, ताहम जुलाई में मानसून की सूरत हाल बेहतर हुई है और मानसून की मजमुई बारिश में कमी घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुलाई में मजीद बारिश होगी, जिससे खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि अब तक 350 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर खरीफ फसल की बुआई मुकम्मल हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 91 लाख हेक्टेयर कम है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों को मशवरा दिया कि वो बारिश में ताखीर के असरात कम करने के लिए कम मुद्दत में तैयार होने वाली और कम पानी वाली फसलों जैसे मकई, बाजरा और मूंग की काश्त करें।

0: विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तुयुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 12वीं सीट की खिलाड़ी मार्ता कोस्तुयुक ने आज सेंटर कोर्ट में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसी तरह 9वीं सीट की खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की खिलाड़ी एलिस मार्टिन्स को 6-3, 7-5 से हराया और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबोर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसी रुखी प्लेटफॉर्म पर इन आजादे दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज्म का इरादा किया। वह दिफाई तहकीको तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइशी परवाज की। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने इत्मीनान जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दरअसल आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी अंग्रेजी दोना उर्दू नो खबर लांगेनुत पिन मीडियम वेविका अचास आकाशवाणी कारगिली कना जरिनुत वक्सपोत हनी तुसो तुर्गुन फेतसोंसो कसता प्रोग्राम यन मजत महफिले मुशाहिरा प्रोग्राम सिरता से प्रचुखन पिन सज्जात अली शुजात प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन
2: रिंजन स्नगा बखनोनी खिदमत अचे जुना सलाम आकाशवाणी करगिल मैडम वे का जप बोदो छानी तो सोत और गुना फेत जब इंग्रेसिस निस्पा बोधि जगह फ्रुचुक पछे प्रोग्राम पुआर गसे रेडियो स्त्रोलिका अचे फेस्पा प्रोग्राम महफिल मुशायरे दिरिंग सिर पुआ स्नगा बेनुत खान यंतंग युली शर्बन चुंग गंगमा यंग रिशिक यंति मेजबान सज्जाद अली शुजाती जुना सलाम पो फ्रद मचन सोशिक दिरिंग आकाशवाणी करगिली ग्रालिका करगिल जोंगी पुरगिना उर्दू स्कति गोथोशन और सोमशसपान न शोराई करामुल्ला नचस यंग रशिक आकाशवाणी करगिल स्टेडियम नो कुस्क्यो जुसे कंसेट गानिल जिचन इन मिर सोमसे फ्रांगोनिस रिंचन यन खानुल्ला तुसन नमजी गुरजानी रुजु छचुक चस्पुने यंबो मेमांग सिरकिलंग हागोस बेलचस्पेंग नो रंगी खक्षसे लजुन मलेंग क्यों न्योता यंगति दना शंगस्पेंगचन शोराई करामुनी ब्रोचन सोमसे फ्रांगोन सोरेर ग्याबना मेंटक्सना यंतंग रिंचन यन खानुनी सिंगिंगा सिंग सोत मेंटक्सना थोबा चाचासिन आकाशवाणी करगिली ग्रालिका दुरुलन यो पिदरिंगी महफिले मुशायरा नो खाखलेन खान करगिल रजोंगी पुरगी शीना बल्ती यंग उर्दू स्कति मिंगबिंग शोराई करामुनी रचेसमिगुन दुसुक्सलायोत मोहतरम जनाब अकबर अली साहब शाहीन मोहतरम जनाब गुलाम कादिर साहब जकी मोहतरम जनाब मोहम्मद अली साहब खुमार मोहतरम अहमद हुसैन साहब उल्पा यादरिंगी रेडियो मुशायरे निजामत खकुर खनपू नखेमद सज्जाद अली शुजात याले रिंचन स्नगाबा खानुन तुस्पो अति लगा निंसे यंग अतिर के लियानुक जिचन रसुमसे फ्रांगुन स्ट्रोलिका मेमांसी सेम्स ला नित सत खान रसुमस्पानी शेरी फ्रांगुन लार्गा से रुक्से दुखन नतिंगन कानूनी रसिस्पु थोमेदुत दियों ता यंग नमजा मोमो मचातपा ना सुबत दुनला नति दुनमा क्रिम्स न थेसे दिरिंग खोरतांस पे ग्रारगो अशिबे फिया पुरी करगिली मिंगब्युंग शायर ना अहलिबेती छारेंग लोग बुलबुल ना जोस कत लेक्स पिंगेन मलपा बोसिन जोस पी लेक मोस कत वल्तिस कती मिंगब्युंग शायर मुअज्जिज ना मोहतरम जिनाब मास्टर अकबर अली साहब शाही ने फ्यापे रतनचन जिंगमे कांगतेस दिरिंग महफिले मुशायरे सदारत खपुस कालेंचिक दिरिंग महफिले मुशायरा वांगतेस गुजुक्स बे फ्रलुक्स बाचाबेत ना जुआबेत मोहतरम जिनाब अकबर अली शाहीन साहब यरी फ्यापवाजू दिरिंग रसुम स्कॉर्पियनुक सदारत खपु अशिवसे महफिले मुशायरे छिरपुआ रंग जोक ना एरियन चेचेस दे छोक मोहतरम जिनाब मास्टर अकबर अली साहब शाहीन एरियन चेचेस अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद सदर मुशायरे कना इजिन लेने रिंचन गन खानुन सख मोमो यां रिंस मरीन शुकबा दिरिंगे महफिले मुशायरा ला गुजुब्स बचबेत नज दिरिंगे अरसोम्स खोरी गोमा शायर पुरगीस कति यरंग मोचन छन युत पीश ओराय करामुनी सिरपेनुक द्रेसेन चुगतंग मोहतरम जनाब अहमद हुसैन साहब उल्पे रिंसिशन कलामपो यल रिंचन